मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी दरभंगा है। आज शक संवत 1948 के श्रावण माह की पांचवीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026 ईस्वी, दिन सोमवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 32 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रथम सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन, अपन देश भारत। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का है।
1: अपन देश भारत प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वाला राष्ट्र थिक। प्रजातंत्रक अर्थ होइ प्रजा वा जनता के शासन, एहन शासन जाहि में सब व्यक्ति के आत्मोत्थानक अवसर भेटे छन, एहन शासन जाहि में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र निर्माणक महत्वपूर्ण घटकक रूप में अपन योगदान दै, अपन उत्तरदायित्व बुझै। ई स्थिति तखने आनल जा सकै जखन कि स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ कैल

0: भारतक 60 करोड़ सँ बेसी लोक गाममे निवास करै छथि। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत प्रशासन आ प्रगतिक आरंभिक इकाई थिक। जँ ग्राम पंचायत के एहि योग्य नहि बनाओल जाय, जाहिसँ कि ओ ग्रामवासीक आर्थिक आ सामाजिक उन्नतिक उपाय कऽ सकय, तँ ग्राम पंचायतक अर्थे की? सम्प्रति तँ नाम लय ग्राम पंचायत अछि, पंगु निस्सहाय बनल अछि। एखन ग्रामीण जनता अपन उत्थानक लेल नौकरशाहीक कृपाकांक्षी बनल अछि, जे नौकरशाही एक सीमा तक सामान्य जनक प्रति उदासीन आ अनुत्तरदायी अछि। परिणाम ई अछि जे विकासक लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुँचैत पहुँचैत किछु बाटे में बिला जाइत अछि। यत्किंचित जे पहुँचबो करैत अछि तकर सदुपयोग नहि भऽ पबैत अछि, आ तैँ ग्रामीण स्थिति एखनो अभाव आ दैन्यसँ भरल अछि। वर्तमान में स्थिति ई अछि जे ग्रामीण सामान्य जन के इहो नहीं बुझल छनि जे प्रजातांत्रिक राष्ट्रक नागरिक हेबाक नाते हुनक की अधिकार छनि आ हुनका कोन कोन दायित्वक निर्वाह करक चाही। दोख हुनकर नहीं छनि, हुनका आई पर्यंत एहन अवसरे नहीं भेटलनि जे ओ अपना दायित्व के बुझथि आ ओकर निर्वाह करथि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहल करथि जे बिना ग्राम पंचायत के मजबूत बनौने भारतीय प्रजातंत्र सफल नहीं भ सकै छै। राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहब छलनि, बिना ग्राम पंचायत के सुदृढ़ केने विकास कार्य अपूर्ण रहत। ग्रामीण दशा में सुधार तो ग्रामवासिये के केने हेतनि। ऊपर सँ जँ केओ चाहे जे बिना ग्रामवासीक सहयोगे हम ग्रामीण स्थिति में सुधार कऽ देब तँ एकरा अरण्य रोध नहि बुझल जाय, ई संभव कदापि नहि अछि। आइ सँ 30 वर्ष पहिने 2 अक्टूबर 1959 में महात्मा गांधीक जयंती के अवसर पर राजस्थान में नागौर नामक स्थान में ग्राम पंचायतक उद्घाटन करैत पंडित नेहरू बाजल रहथि, लाखक लाख गाम के सुधारब बड़ गुरुतर काज अछि, एहि दिशा में प्रगति मंद अछि, जकर कारण ई अछि जे विकासक लेल भारतवासी सरकारी तंत्र पर निर्भर छथि, ई नहि हेबाक चाही। अधिकारी वर्गक यद्यपि प्रयोजन अवश्य छै कारण जे ओ विशेषज्ञ अछि, किंतु ग्रामवासी के योगदान तँ अनिवार्य अछि। जावत ग्रामवासी के उत्तरदायित्व नहि देल जतैन तावत गामक वास्तविक कायाकल्प नहि भ सकै छै। उत्तरदायित्वक ई अर्थ नहि जे गौआ घरुआक मात्र परामर्श सँ काज कयल जाय, एकर ई अर्थ भेल जे विकास कार्यक अधिकार ग्रामीण जनता के देल जाय। पंडित नेहरूक स्पष्ट संकेत छलनि जे सत्ताक केंद्रीकरण नहि हो, सत्ता विकेंद्रित भऽ कऽ ग्रामवासी लोकनिक हाथ में आबनि, ओ अपन उत्तरदायित्व बुझथि। हुनका लोकनिक बुझबा योग्य होनि जे ओ भारतक नागरिक छथि, हुनका स्वावलंबी बनबाक छनि आ ग्रामीण कायाकल्प करबाक गुरुतर भार हुनके कान पर छनि। ग्राम पंचायत व्यवस्था के सुदृढ़ केने एहि स्थिति के प्राप्त कयल जा सकै छै। गाम विकसित हैत तो भारत आर्थिक आ सामाजिक दृष्टियें सबल बनत, दोसर कोनो विकल्प नहीं अछि।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा, जलवायु परिवर्तन एवं पशुपालन। वाचन स्वर मिहिर कुमार झा का है।
2: किसान भाई नमस्कार। आजुक कृषि चर्चा के संग हम मिहिर कुमार झा अखन चर्च करब अपना सब जलवायु परिवर्तन एवं पशुपालन विषय पर। किसान भाई लोकन, अपना सब खेती पथारी करैत मालजाल पोसे छी, कियाक तँ मालजाल के खेती पथारी के एगोट पूरक कही तँ कोनो अतिशयोक्ति नहीं। पहिने जे अपना सब परंपरागत ढंग से खेती पथारी करैत छलहुँ तँ निश्चित तौर पर मालजाल खेती पथारी के एगोट अभिन्न अंग छल, कियाक तँ परंपरागत खेती पथारी में खेत हर आ बरदे से जोतल जाय छल। किसान भाई लोकनि, अपना सब जनै छी जे आब तँ परंपरागत खेती पथारी प्रायः नहि के बराबर होइत छै, आब तँ वैज्ञानिक पद्धति से खेती पथारी अपना सब कऽ रहल छी, नीक बात छै। आब तँ खेत जोतै के लेल ट्रैक्टरक उपयोग करै छी। खेत जोतै में जतऽ हर बरद से कतेको समय लगै छल से आब ट्रैक्टर क्षण भर में कऽ दैत अछि, अर्थात जे

0: दिनक दिन लगै छल ओ ट्रैक्टर आब एक आध घंटा में खेत के जोति दैत अछि। किसान भाई लोकन वैज्ञानिक पद्धति से खेती पथारी करबाक बहुतो रास यंत्र सब आब आबि गेल अछि। विज्ञानक ई चमत्कार ते नमस्कार योग अछि। किसान भाई खेती पथारी में जँ अपना सब जैविक खादक उपयोग करै छी ओ जैविक खाद तऽ मालजालक गोबर मालजालक निंघेस से मालजाल के बथान पर जे खरन मरण होइ छै निंघेस ओहि से गाछ वृक्षक पात एहि सब से अपना सब जैविक खाद बनबै छी। अपना सब जनै छी जे जैविक खाद खेती पथारी के लेल एक गोट सर्वांगीण पोषण तत्व कही तऽ कोनो हर्ज नहि। रासायनिक खादक उपयोग में तऽ पहिने मृदा परीक्षण करायब ओकर बाद में खादक कमी होय तऽ ओहि खादक उपयोग खेत में माटि में कर दियो जेना फास्फोरस पोटास यूरिया एहि सब तरह खाद जे छै ओकर मात्रा के हिसाब से ओहि खेत में देल जाय छै मृदा परीक्षण कयलाक बाद। ओतय जैविक खाद में मात्रा के कोनो सीमा खास कए कऽ नहि के बराबर छै। संगे जैविक खाद से उपज नीक तऽ हेबे करै छै। फसिल जे छै जैविक खाद के उपयोग कयलाक बाद जे उपजैत अछि ओ फसिल टिकाऊ आ स्वादिष्ट सेहो होइ छै। किसान भाई लोकनि माल जाल पोसला से अपना सब दूध जे आहार में संपूर्ण आहार कहल जाय छै से दूध अपना सब के भेट जाइत अछि नीक आ शुद्ध दूध भेटैत अछि। संगे माल जाल से नकदी आमदनी अतिरिक्त जे छै सेहो अपना सब कंचन प्राप्त भऽ जाइत अछि। एहि तरह माल जाल अपना सब किसान भाई के लेल सब तरह उपयोगी अछि। किसान भाई लोकनि माल जाल जे पोसै छी तऽ ओकर स्वास्थ्य पर थोड़ेक विशेष ध्यान राखब सेहो आवश्यक छै खास कए कऽ अखन बरसातक समय में। किसान भाई लोकनि अखन अपना सब देख रहल छी जे जलवायु परिवर्तनक चक्र चलि रहल अछि। कखनो तापमान में वृद्धि अनियमित रूप से वर्षा एहि सब तरहक जे छै कखनो बड़ कड़गर रौद भऽ जायत तऽ किसान भाई लोकनि अपना सबके बुझल अछि जे जलवायु परिवर्तन के असर सीधा पशुपालन अर्थात माल जाल पर पड़ैत अछि। अखने जे तापमान में कखनो वृद्धि अनियमित वर्षा आ सूखा के कारणे हीट स्ट्रेक जकरा गर्मी के तनाव कही ई बीमारी के संभावना माल जाल में बेसी भऽ जाय छै। जैसे माल जाल तऽ खास कए कऽ दुधारू जे छथि हुनका पर बेसी असर पड़ैत अछि। दुधारू माल जाल पर खास कए कऽ हीट स्ट्रोक के बेसी असर देखबा में अबैत अछि। किसान भाई लोकनि अखन जे जलवायु परिवर्तनक चक्र में दूध उत्पादन में 20-25% के कमी सेहो देखल जाइत छै। संगे माल जालक प्रजनन क्षमता तकरो प्रभावित ई कऽ रहल अछि। जलवायु परिवर्तन अखन जे जलवायु परिवर्तन भऽ रहल अछि ओहि के चलते माल जाल के लेल गुणवत्तापूर्ण चारा ओकरा पीबै के लेल स्वच्छ आ साफ पानिक सेहो अभाव देखबा में अबैत छै। किएक तऽ कतौ ततेक वर्षा होइ छै जे बाढ़ि के कारण पानि साफ भेटनाइ थोड़े दुरूह छै। देखियौ किसान भाई लोकनि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पशुपालन पर पड़ला से दूध आ मांसक उत्पादन में सेहो कमी आयल हँ प्रभावित करैत अछि। तऽ किसान भाई लोकनि माल जाल के स्वस्थ आ सुरक्षित रखै के लेल स्थानीय पशु चिकित्सक केंद्र पर संपर्क कऽ ओकरा टीकाकरण अवश्य करी जाहिसँ माल जाल स्वस्थ रहत नीक रहत। एक संग आजुक कृषि चर्चा संपन्न भेल। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। अब आप
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई

0: पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। टॉन्सिलिटिक्स कारण और निदान, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय कुमार झा।
3: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे टॉन्सिलाइटिस इस विषय पर, और इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार झा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि टॉन्सिलाइटिस क्या है।
4: टॉन्सिलाइटिस से टॉन्सिल का सूजन है। ये टॉन्सिल मुंह के अंदर मतलब जीभ के पिछले भाग में दोनों तरफ होता है। टॉन्सिल दो है।
3: अच्छा।
4: और इनका सूजन जो है वो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मूलतः ये बच्चों की बीमारी है। इसमें बच्चों को तेज बुखार आना, कान में दर्द होना, खाने में तकलीफ होना, मुंह से लार आना, तेज बुखार होना, ये सब उसके प्रमुख लक्षण हैं। और इसका समय पर इलाज होना, एंटीबायोटिक दवाएं और गार्गल से इसका इलाज होता है।
3: कैसे लोग समझें कि टॉन्सिलाइटिस है?
4: टॉन्सिलाइटिस को देखेंगे बच्चे के गले के दोनों तरफ, देखेंगे कि एक उभार आ गया, गिल्टी आ गई गले में,

0: और बच्चा बुखार में है, बच्चा को खाने में तकलीफ हो रहा है, खांसी से खांसी भी हो रहा है, सर्दी है, तो हाँ। समझें कि बच्चे को टॉन्सिल
1: निगलने में तकलीफ,
0: निगलने में भी तकलीफ होगी।
1: अच्छा, टॉन्सिल जो गले के दोनों भाग में आपने बताया उसमें दर्द होता है।
0: जी दर्द होगा।
1: ऐसा देखा गया है कि जिस भी बच्चे को एक बार टॉन्सिलाइटिस हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए, उसमें तकलीफ हो, तो बार बार ये समस्या आती है। हाँ। इसकी क्या वजह है?
0: इसकी वजह है, उसकी वजह भी इन्फेक्शन ही है। तो जो बच्चे, कुछ कुछ बच्चे प्रोन होते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए, कहा जाता है कि इसको ज़्यादा सर्दी होता है, तो उनका एक तो बॉडी का प्रीडिस्पोजिशन है, उसके शरीर की बनावट इस ढंग की है कि वो रिकरेंट इन्फेक्शन उनको होता है वहाँ पर टॉन्सिल का। तो इसके बचने के लिए ठंड से बचाव करना, ठंडा कोई पेय वगैरह नहीं पीना, और नियमित रूप से बच्चे को गार्गल घरेलू इलाज कराना, तो ठीक रहेगा।
1: कुछ लोगों में भी, मतलब बड़े लोगों में भी ये समस्या होती है।
0: जी बच्चों, बड़े लोगों में ये समस्या कम देखी जाती है, लेकिन लक्षण उनमें भी यही प्रकट होगा। हाँ, मूलतः लेकिन ये बच्चों की बीमारी है।
1: अच्छा, जब एक बार तकलीफ हो जाए, बुखार रहे, तेज बुखार भी हो सकता है, एक कम भी बुखार हो सकता है, लगातार बुखार बने भी रह सकता है, ये दोनों ही स्थितियाँ हैं। अगर तेज बुखार हो, कुछ भी निगला नहीं जाए, उस कंडीशन में लोग क्या करें?
0: पैरासीटामोल दें, बच्चे को सिरप दें, सियाने को इसका टैबलेट दें, और एंटीबायोटिक दवाएं दें।
1: और कोई भी दवा लें तो पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लेंगे, उसे कितनी दवाएं देनी है।
0: जी हाँ, उसकी मात्रा, उसका निर्धारण तो चिकित्सक ही करेंगे।
1: अच्छा, टॉन्सिलाइटिस के बारे में कहा जाता है, कभी कभी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ये दवा से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन की स्थिति बन गई।
0: ऑपरेशन की स्थिति तब होती है जबकि टॉन्सिल के ऊपर में मवाद बनाता है, अगर वो स्थिति आ जाती है तो वो और भयानक स्थिति, इसको पेरी टॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। अगर वो हो जाता है तो टॉन्सिल का ऑपरेशन कराते हैं, या किसी को अगर बार बार इन्फेक्शन हो टॉन्सिल का तभी कराते हैं। साल में अगर 4-6 बार किसी को इन्फेक्शन हो जाए टॉन्सिल का, तो ऐसी परिस्थिति में टॉन्सिल का कराते हैं, या खाने में तकलीफ हो। उसके अलावा बहुत लोगों को स्नोरिंग की समस्या होती है, खराटे बढ़ने की समस्या होती है, तो वो भी बड़ा टॉन्सिल होने से होता है, तो उस सब परिस्थिति में टॉन्सिल का ऑपरेशन होगा।
1: टॉन्सिल का ऑपरेशन अगर एक बार करा लिया जाए तो क्या हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाती है, या फिर?
0: जी टॉन्सिल तो नहीं रहेगा तो टॉन्सिलाइटिस तो नहीं होगा, लेकिन गले के और भाग में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको फेरिंजाइटिस बोलते हैं।
1: जी उसमें लोग क्या करें?
0: फेरिंजाइटिस का भी वही इलाज होगा जो कि टॉन्सिल का इलाज, टॉन्सिलाइटिस का इलाज होता है।
1: अच्छा, कुछ सावधानियाँ, कुछ परहेज
0: जी
1: अगर लोग अपनाएं तो इस समस्या से जो बार बार उनका सामना होता है वो कम किया जा सकता है।
0: जी उससे बचा जा सकता है।
1: क्या है ये सावधानियाँ?
0: ये सावधानियाँ है कि ठंड से बचाव करना सबसे पहले बहुत जरूरी होगा, धूल डस्ट ये सब, घर का जो झाड़ू वाड़ू है सबसे अपने को थोड़ा परहेज रखना, ये कोल्ड ड्रिंक्स सबका इस्तेमाल नहीं करना, ये जरूरी होगा परहेज में।
1: तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमने चर्चा की टॉन्सिलाइटिस के विषय में। डॉक्टर विजय कुमार झा, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी दरभंगा से। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान। प्रमुख स्वर शोभा जोशी का है।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस कांड। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी दरभंगा से आज आप सुनेंगे प्रातः 7:05 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। प्रातः के 8 बजे सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और प्रातः 8:30 पर खबरनामा। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे प्रातः 8:48 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:10 पर। प्रातः 10 बजे फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे और प्रातः 10:30 पर सुनेंगे विद्यापति गीत। प्रातः 11 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित जसराज का गायन। NCERT यह प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:30 पर। दोपहर के 12 बजे आप आनंद ले पाएंगे नए फिल्म संगीत का। नारी संसार महिला श्रोताओं को संबोधित यह कार्यक्रम सुनिएगा 12:30 पर। दोपहर के 1 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार का प्रसारण होगा। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत, आवाज होगी मोहम्मद रफी की। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर के 1:15 पर।

दोपहर 2 बजे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। दोपहर 2:05 पर इलाकाई खबरें सुन पाएंगे आप और रोजगार सूचना सुनिएगा दोपहर के 2:10 पर। दोपहर समाचार का प्रसारण करेंगे दोपहर 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनिएगा फिल्म

हमारी पहली सभा के अंत में दोपहर के 3 बजे आप सुनेंगे लोकगीत। दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे संध्या 5:40 पर। विद्यापति गीत सुनिएगा संध्या 6:10 पर। संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे। गाम घर अनुभव के चश्मा सा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7 बजे। संध्या 7:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, प्रसारण हमारे पटना केंद्र से किया जाएगा। 7:47 संध्या आप सुनिएगा जिले की हलचल। संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे रात्रि के 8 बजे। सिंगरहार यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर प्रसारण होगा समाचार संध्या का। 9 बजे News@9 और रात्रि 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा पब्लिक स्पीक। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार का प्रसारण किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में समाचार का प्रसारण होगा, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्वनिदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्वनिदेशकः वी कामकोटिः, पूर्वशिक्षासचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भाविपरीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षासम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोरप्रावधानयुक्तं नूतनविधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध

0: टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य संपूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: रक्षामंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वां कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यकायोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्धविराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
0: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली

0: महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार।
0: सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग बात करते हैं सुविचार। सुविचार है आज का चाणक्य नीति से। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है।

0: और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है, यह है चाणक्य नीति।
1: निश्चित गप छे अहाँ के किछ अगर संगी अहाँ से नहीं नीक रहता तो अगल बगल के लोग अहाँ से नहीं नीक रहता तो अहाँ तरक्की करबे करब, मुदा कै बेर अगर अहाँ के मूर्ख संगी अगर अहाँ बना ले छी और वो अहाँ से कतबो अहाँ से नीक रहता तो मुदा अहाँ के लेल ओ खराबिये कऽ जतत। ताहि दुआरे अगर एहन स्थिति में अगर कहल जाइत अछि कि अगर किछ शत्रु जे अगर अहाँ से किछ बुद्धिमान हुए तो वो अहाँ ले बेसी नीक अछि, क्योंकि वो अहाँ के आगू बढ़बे के लेल प्रेरणा देत, ओ कतौ न कतौ चाहत कि अहाँ खसी और अहाँ ओहि दिशा में अपन आपके उठायब और जखने अपने आपके नीक करैत चल जायब तऽ अहाँ आगू बढ़ैत चल जायब, और जे लोग आगू बढ़ै छथि से इतिहास में सेहो नाम करै छथि। और कार्यक्रम आइ सेहो आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अछि ताहि पर हमसब चर्चा कऽ ली।
0: आज ही के दिन सन 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। सन 1913 में आज ही के दिन आजादी की महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त का जन्म हुआ। और निशानेबाज जसपाल राणा ने विश्व राइटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और रिकॉर्ड बनाया। आज ही के दिन 1994 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का शिलोंग में निधन आज ही के दिन सन 2015 में हुआ। आज ही के दिन यानी 27 जुलाई 1921 को इंसुलिन की खोज की घोषणा हुई और डायबिटीज के इलाज में क्रांति आई। सन 1940 में आज ही के दिन फेमस कार्टून कैरेक्टर बक्स बनी पहली बार पर्दे पे आया। और टाइटैनिक जहाज का मलबा खोजा गया आज ही के दिन सन 1987 में। 1996 में आज ही के दिन अटलांटा ओलंपिक के दौरान बम धमाका हुआ और महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे का जन्म आज ही के दिन सन 1960 में हुआ।
1: तो इछल आज के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है एकर बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करते रही और कार्यक्रम में आब किछ आगू बढ़े छी, अपने सबके मैथिली गीत सुनबै छी।

0: तो आशीष जी, अभी हम लोग ममता ठाकुर के गाय मैथिली सुगम संगीत का आनंद ले रहे थे और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित है आशीष कुमार सिंह।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का।
5: देश हो रहा है आयुष्मान।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष

किछोट सनक व्यावसायिक विश्रामक बाद अपने सब समक्ष रेडियो सेट और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से प्रस्तुत है हालचाल। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित यह हालचालक संग हम छी आशीष। बाबा मटेश्वर धाम में 30 जुलाई से शुरू होने वाला श्रावणी मेला 2026 के लौके अनुमंडल प्रशासन तैयारी तेज कर चुकल छथि। डाक आ कांवरिया श्रद्धालु सबके सुरक्षा सुविधा आ निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करे के उद्देश्य से SDO सिमरी बख्तियारपुर जिला पदाधिकारी सहरसा के विस्तृत प्रतिवेदन पठाके बेगूसराय मुंगेर आ खगड़िया जिला प्रशासन के संग संग रेलवे प्रशासन से समन्वय स्थापित कर के आवश्यक व्यवस्था करबे के अनुरोध सेहो कैलथ है। बिहार के सबटा पंचायत में और गाम में सुधा सखी बहाल हेतथ और पशु औषधि केंद्र खुजत। सहरसा सहित बिहार राज्य के सबटा जिला में एहि तरहक नबका व्यवस्था कम्फेड बहाल करत। सुधा सखी और पशु औषधि केंद्र के संचालन महिला सबके जिम्मे रहतन। सुधा सखी जिनका अहाँ के पशु सखी सेहो कहल जा सकैत अछि ग्रामीण क्षेत्र के पशु सबके प्राथमिक उपचार के लेल प्रशिक्षित कयल जतन। ग्रामीण क्षेत्र के बीमार पशु सबके इलाजक लेल पशु चिकित्सालय या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करे के संगे पशु चिकित्सक के व्यवस्था करे के सेहो जिम्मेदारी हिनके सबके ऊपर रहतन। ओते जन औषधि केंद्र के तर्ज पर गाम सब में पशु औषधि केंद्र सेहो खोलल जात जतो सस्ता जेनरिक दवाई भेट सके। सुपौल जिला में मानसून के सुस्त चाल से आब किसान सब के संग संग आम लोग सब सेहो परेशान भ रहल छथि। पिछला 5 दिन में बरखा नहीं हुई के कारणे तेज रौद और उमस से जनजीवन सेहो प्रभावित भ चुकल अछि। खेत सब में नमी तेजी से कम हुई के कारणे धान के फसल पर संकट उत्पन्न भ रहल अछि। पिपरा प्रखंड क्षेत्र के पथरा उत्तर पंचायत स्थित जोलनिया में नागपंचमी के लौके 2 अगस्त के बैसार हैत। एहि बेर 17 अगस्त के नागपंचमी के दिन कैलाशपुरी मेला स्थल पर स्थित माता विषहरी के मंदिर परिसर में हजारों के संख्या में श्रद्धालु सबके भीड़ इकट्ठा हैत। एहि के लेल मेला समिति स्थानीय जनप्रतिनिधि आ गणमान्य लोग आ प्रशासनिक सहयोग सहित विभिन्न बिंदु सब पर विचार विमर्श कयल जायत। एहि के लेल ई बैसार कयल जा रहल अछि। तेज रौद और गर्मी काल रवि दिन भर लोक सब परेशान रहलत। भोरे होते पारा 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गेल छल जे दोपहरिया होते होते 37 डिग्री सेल्सियस के सेहो पार कर गेल। ऐसे पूरा सब ठाम आम जनजीवन अस्त व्यस्त भ गेल। अइ रौद के कारणे दिन भर लोक सब अपन घर में दुबकल रहलत। एहि कारणे बाजार और सड़क पर एक्का दुक्का लोक देखा पड़ रहल छलत और कतो कतो एक्का दुक्का वाहन से चलैत छल। सामान से बेसी पारा रही के कारणे लोक सब के स्थिति खराब छलन। मुदा दैनिक मजदूर करे वाला आदमी बेसी परेशान छल। हुनका सबके दिन भर बेर बेर पानि के सहारा लिया पड़लन। महेशवाड़ा पंचायत के मैनापट्टी गाम में 16 भूमिहीन परिवार सबके आवासीय भूमि के बंदोबस्ती पर्चा देल गेल। मधुबनी में सब साल हजारों टन अनाज नष्ट भ जाइत अछि। एकर चलते कृषि उत्पाद के संरक्षण हेतु सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना शुरू कैलथ है। एहि योजना के अंतर्गत किसान सबके गोदाम आ कोल्ड स्टोरेज निर्माणक लेल 2 करोड़ रुपया तक के लोन देल जतन। मधुबनी जिला में मातृ आ नवजात स्वास्थ्य सेवा सबके गुणवत्ता सुधारे के लेल राज्य स्वास्थ्य समिति बहुत पैघ कदम उठेलथ है। आप सबटा जिला और अनुमंडलीय अस्पताल के लेबर रूम आ प्रसूति आ स्त्री रोग ऑपरेशन थिएटर के विस्तृत गैप एनालिसिस कराओल जाएत। सबटा जिला के रिपोर्ट 2 दिन के भीतर तैयार कर के राज्य स्वास्थ्य समिति के पठबे के निर्देश देल गेल छन। बेनीपट्टी में कारगिल युद्ध के 27वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा आ श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। समारोह में युवा छात्र और सामाजिक

0: कार्यकर्ता सब भाग लेलत। उच्चैठ में वीर शहीद सबके श्रद्धांजलि देल गेलन। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। बिहार सरकार के दिस से 10वीं पास बच्चा सबके निशुल्क मेडिकल आ इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करौल जायत। एहि के लेल हाई स्कूल में कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध करबै के योजना बनाओल गेल अछि। मधुबनी जिला के 5 हाई स्कूल के एकरा लेल चिन्हित कयल गेल अछि। चयनित विद्यालय में रामेश्वर प्लस 2 हाई स्कूल राजनगर, MYN प्लस 2 हाई स्कूल सम्भुआर, RPDJ प्लस हाई स्कूल जितवारपुर, MSC प्लस हाई स्कूल लोहा आ देवनारायण पार्वती हाई स्कूल भराम अछि। मधुबनी जिला के सबटा सरकारी विद्यालय सब में शिक्षक सबके सेवा पुस्तिका के संधारण अभिरक्षा आ संरक्षण के लौके विस्तृत निर्देश देल गेल अछि। सबटा शिक्षक सबके सेवा पुस्तिका में प्रथम नियुक्ति, वार्षिक वेतन वृद्धि, सेवा सत्यापन, अवकाश, पदोन्नति, प्रशिक्षण आ अन्य आवश्यक प्रविष्टि सब समय पर दर्ज केनाई अनिवार्य कयल गेल अछि। सेवा पुस्तिका में ओवर राइटिंग नहीं होयत आ त्रुटि होय पर नियमानुसार संशोधन कऽ कऽ सक्षम पदाधिकारी या अधिकारी सबसे सत्यापित कराओल जायत। शिक्षक सबके लिखित अनुरोध पर सेवा पुस्तिका के अवलोकन तथा प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराओल जतन, मुदा मूल सेवा पुस्तिका कोनो शिक्षक के कोनो परिस्थिति में नहीं देल जा सकैत अछि। झंझारपुर में मानसून कप अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ भेल। एहि में आरोनी क्रिकेट अकादमी नॉर्थ बिहार क्रिकेट अकादमी के 126 रन से हरा देलक। रतनपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के दिस से पूरा जोश और गर्व के संगे कारगिल विजय दिवस मनाओल गेल। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सैनिक सब 527 बलिदानी सबके नमन कलत आ 1003 दिव्यांग वीर जवान सबके साहस सबके सलाम कलत। जाली नगर परिषद सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत करे के लेल पैघ पहल शुरू कलक अछि। पहिल चरण में मुख्य बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहा सब पर कैमरा लगाओल जा रहल अछि। 100 महत्वपूर्ण स्थान पर CCTV लगाएल जा रहल अछि। काल्हि रवि दिन पटनिया पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम भेल, जत बच्चा सबके गोद लेके प्रक्रिया, बाल विवाह, बाल मजदूरी आ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर जानकारी देल गेलन। राज्य सरकार रैयाम चीनी मिल के पुनः चालू करबे के कवायद तेज कऽ चुकल छथि। चीनी मिल के लेल बहुत पैघ पैमाना पर कुसियार के काज पड़त। एहि के लेल किसान सबके जागरूक कयल जा रहल अछि। एकर अंतर्गत जिला का 3 प्रखंड सिंहवाड़ा, केवटी आ मनीगाछी में 3 विशेष शिविर लगाओल गेल। एहि में पैघ संख्या में किसान सब पहुँच कर गन्ना उत्पादन में रुचि देखौलथि। रवि दिन एहि शिविर सबके अंतिम दिन छल। सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय में कृषि भवन में गन्ना क्षेत्र विस्तार अभियानक अंतर्गत 965 किसान सब चीनी मिल के सदस्यता के लेल आवेदन कलथि। गन्ना क्षेत्र विस्तार के लेल सरकार के दिस से विशेष पंजीयन अभियान चलाओल गेल अछि। सबटा पंचायत में आयोजित शिविर में 1836 किसान अपन रजिस्ट्रेशन करौलथि। दरभंगा जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग के दोसर सेमीफाइनल में आजाद क्रिकेट क्लब दरभंगा क्रिकेट क्लब के 69 रन से हरा के फाइनल में स्थान बनौलथि। दलसिंहसराय में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार एकटा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कयल गेल। एहि शिविर में पैनल अधिवक्ता सुरेश प्रसाद महतो दत्तक ग्रहण संबंधी कानून और प्रक्रिया के जानकारी देलथि। रोसरा

0: में नागपंचमी आ विषहरी मेला के आयोजन के तैयारी के लकर कल रवि दिन पूजा समिति या मेला आयोजक सबके बैसाल भेल। बैसाल में प्रशासनिक लाइसेंस के बिना मेला आयोजित नहीं करे पर और विचार कैल गेल। रोसड़ा में देव शयनी एकादशी के संगे रवि सँ चतुर्मास के शुरुआत भ गेल जे 19 नवंबर धरि चलत। एहि क्रम में विवाह जेहन मांगलिक कार्य पर रोक रहत। श्रद्धालु सब विशेष पूजा कैलत। 70 कटैया में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के सफल आयोजन के लेल बैसार भेल। एहि में महोत्सव के धूमधाम से मनबे पर विचार भेल। 28 जुलाई के सांझ 5 बजे से सत्संग आ भजन कीर्तन हैत आ 29 जुलाई के भोरे 7 बजे से पूजा शुरू हैत। एहि में बच्चा सब वेद मंत्रोच्चार करतत। एहि के बाद गुरु पूजन सत्संग आ भजन कीर्तन चलत। सुपौल जिला में फल वाला गाछ लगबे पर उद्यान विभाग अनुदान दऽ रहल छथि। एहि के लेल आवेदन शुरू भ गेल अछि। पंचायत भवन चौघाड़ा में बैसार भेल जाहि में बाबा धर्मराज महोत्सव के बिहार सरकार दिस सँ राजकीय दर्जा दै पर खुशी व्यक्त कयल गेल। झंझारपुर में काल रवि दिन पंचायत विकास दिवस आयोजित भेल। एहि में ग्रामीण सब अपन समस्या के संगे पहुँचलत। राशन कार्ड पेंशन आ प्रमाण पत्र से जुड़ल मामला सबके सुनवाई कयल गेल। मधुबनी शहर के महंती लाल राम जानकी मंदिर के विकास के लेल बैसार कयल गेल। एहि संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो आशीष जी, आप कार्यक्रम में बात करते हैं कुछ मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 25 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर 28 से 29 डिग्री के आसपास गरज के साथ बिजली चमकने एवं तेज हवा चलने की संभावना है। गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, सारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ कुछ स्थानों में घने बादल तथा मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के बाकी जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है, कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर के समय 50 से 55 के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्य रूप से पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है।
0: हमसब किछु मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करैत रही आओर कार्यक्रममे हमसब बहुत किछुके समेट कयने छी आ गपसप सेहो अपने सबसँ करै छी आओर सङ्गे सङ्गे फिल्म संगीतके सेहो आनन्द लै छी।
3: आओर अगर आशीष जी, अगर मनोरञ्जनके साथ भी किसी कामको किया जाता है तो थोड़ा सा काम करने का गति ही कुछ अलग होता है। तो आइए पहले हम लोग सुनते हैं फिल्म संगीत, उसके बाद आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे।

0: तो आशीष जी, हम लोग आज बात करेंगे कि सपनों को उपलब्धियों में बदलने का मंत्र, कि मनुष्य का जीवन सपनों से ही संचालित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा बनने, कुछ नया करने और समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का सपना देखता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक तो कोई सफल उद्यमी, किंतु केवल सपना देखने ही पर्याप्त नहीं है।
1: हम अहाँ एकटा छोट सनक अगर किछु मोन पड़त तऽ जखन साल खत्म होइत अछि तऽ सालके शुरू खत्म होइते देरी हमसब अहाँके सोचै छी ई सालमे हमसब ई करब ओ करब, तहिना आओर ओ सालके महीना दू महीना जाइत जाइत ओ जे सोचल गप कतऽ चल जाइए सेहो नहि पता रहैत अछि। तहिना हम अहाँ सपना तऽ देख लै छी, मुदा सपनाके सङ्गे सङ्गे कर्म केनाइ से बिसरि जाइ छी, तऽ ओ फेर सपना सपने रहि जाइत अछि। ताहि दुआरे ओकरा बदलैके लेल कर्म केनाइ जरूरी अछि।
0: और यदि सपनों को वास्तविक उपलब्धियों में बदलना है तो उनके लिए निरंतर प्रयास, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। सपने जीवन को दिशा देते हैं, जबकि कर्म उन सपनों को साकार करने का माध्यम बनते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने अपने सपनों को लक्ष्य बनाया और पूरे समर्पण के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यों को संभव कर दिखाया। इसलिए कहा जाता है, सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी इसका महत्व है, सपने मनुष्य के जीवन में आशा, उत्साह और प्रेरणा का संचार करते हैं। वे हमें एक उद्देश्य प्रदान करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है, और जिस प्रकार बिना पतवार के नाव समुद्र में भटकती रहती है, उसी प्रकार बिना सपनों के जीवन भी उद्देश्यहीन हो जाता है।
1: स्पष्ट लक्ष्य बनाओ सबसे जरूरी काज अछि, कियाकि अगर धुंधला सपना रहत तऽ परिणाम केना अहाँ साफ देख सकै छी, ओहो तऽ धुंधले होयत। तहिना अगर कोनो अगर अहाँ लक्ष्य बनबै छी, कोनो सपना देखै छी, जे सबसे पहिले अपन सपनाके अपन कागज पर लिखू, हम की बनै लए चाहै छी आओर कखन तक बनै लए चाहै छी, की आओर कखन, समय प्रबंधन बेसी जरूरी अछि। आओर तकर बाद अबैत अछि ओ बनैके लेल हमरा की सब करबाक चाही, की सब कऽ सकै छी। जखन ई लक्ष्य साफ होयत तऽ रास्ता अपने आप बनऽ लागत। महल जे एक दिनमे नहि बनैत अछि, रोज अहाँके ओहिमे ईंट जोड़ाइत अछि आओर तखन महल बनैत अछि। ताहि दुआरे रोज मेहनत करबाक चाही, कहियो छोड़ी नहि, कनिए कनि सही मुदा रोज करब, अगर लगातार करब तऽ सपना सफल हेबे करत। आइ एक घंटा, काल्हि एक घंटा, परसू एक घंटा, एक साल बाद अहाँ देखब कि अहाँ कतौ से कतौ पहुँच गेलहुँ। आओर सङ्गे समय नहि अछि, पैसा नहि अछि, लोक की कहतत, ई तीनटा सबसे पैघ दुश्मन अछि अहाँके सफलताके। आओर अहाँ कोनो सपना देखै छी तऽ एहि चीज सबसे दूर रहऽ पड़त। सबटा सफल व्यक्ति सब बेर खसै छथि, फेर ओ उठै छथि, आओर सब बेर उठैत जाइ छथि तऽ फेर अहाँके खसैके डर अहाँके भीतर खत्म भऽ जाइत अछि, फेर अहाँ आगू बढ़ैत चल जाइ छी।
0: और हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। आशीष जी, आज जिन व्यक्तियों ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है, उन्होंने आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
1: और सीखैत रहू, क्योंकि जाबत तक सीखब नहि ताधरि अहाँ आगू नहि बढ़ि सकै छी। दुनिया बहुत तेजी से बदलि रहल अछि, जे आइ सीखनाइ बंद कऽ दै छथि से काल्हि पाछू रहि जाइ छथि। अपन गलती से सीखू, सफल लोक सब से सीखू, नीक किताब सब से सीखू, नवका हुनर से सीखू, अहाँ 6 महीना बाद देखब कि अहाँ आगू बढ़ि चुकल छी। और ओहि सङ्गे सङ्गे सही लोक सबके चुनाव करू, कियाकि अहाँ की बनै छी, केना बनै छी, ई अहाँके सङ्गे रहैवला 5 जे अगल बगलके व्यक्ति छथि ओ वएह निर्णय करै छथि, कियाकि हुनकर सबके सोचके प्रभाव अहाँके ऊपर पड़ैत अछि। अहाँ जिनका सङ्गे सबसे बेसी समय बितबै छी, जे 4-5 आदमी अहाँके अगल बगल छथि, छठम व्यक्ति ओहने बनि जाइ छै।
0: तो आशीष जी, ये बात आपने बहुत सही कही कि आपके आसपास रहने वाले लोग वही आपको अच्छी दिशा में भी लेके जा सकते हैं और गलत दिशा में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके साथी, आपके संगति, आपके साथ रहने वाले लोगों पे भी निर्भर होता है कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जब हमने सपनों को साकार करने और उपलब्धियों प्राप्त

0: के मंत्र के बारे में बात करें तो इसमें एक बहुत ही खास बात यह भी है कि स्वस्थ आहार की आदत भी आपको बना के रखनी होगी। स्वस्थ हृदय की नींव, संतुलित और पौष्टिक भोजन। भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुन, अनाज, दालें, अंकुरित अनाज, दूध एवं दूध उत्पाद, सूखे मेवे तथा बीजों को शामिल करना चाहिए। इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं। इसके साथ ही अत्यधिक तेल, घी, मक्खन, तले हुए खाद्य पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, अत्यधिक नमक और चीनी का सेवन सीमित करना चाहिए। अधिक नमक रक्तचाप बढ़ाता है जबकि अधिक चीनी मोटापा और मधुमेह का कारण भी बनता है जो हृदय रोगों के लिए प्रमुख जोखिम कारक है।
1: और अगर किसी कुल मिला कर देखिए, अगर हम सब सोची तो किसी सपना के अगर उपलब्धि में बनबे ला चाहे छी तो सपना के संगे संगे योजना, मेहनत, धैर्य और निरंतरता ई सबटा के अगर अहाँ किछ समावेश कऽ लै छी तऽ अहाँ उपलब्धि अहाँ के भेटते टा अछि।
0: तो आशीष जी, जब इतना ही कुछ करने के साथ तो फिर नियमित व्यायाम की आदत भी आप बना ले, क्योंकि शारीरिक गतिविधि हृदय को मजबूत बनाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी, योग या अन्य व्यायाम करना लाभदायक होता है। नियमित व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, रक्तचाप सामान्य रहता है तथा हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ती है।
1: आओ शुरुआत करें छी हम सब, छोट छोट कदम उठाओ मुदा रुकू नहीं, क्या कि रुक जाए तो सपना होते टूट जाए। ताहि दुआरे जे सपना देखलहुँ ओकरा पूरा करैके लेल बिना रुकने धीरे धीरे अगर अहाँ आगू बढ़ैत चल जाएब तऽ आगू बढ़ैत चल जाएब, आओर एक दिन इएह सपना जकर लोकसभ आइ अहाँके मजाक उड़बै छथि वएह अहाँके सपना बनत आओर ओ अहाँके पहचान बनत आओर लोक लोग सपना रहि जेतनि, ओ अहाँ सबके मजाक उड़ेनाइ छोड़ि कऽ अहाँके पाछू आबि जेतनि।
0: आ एक बात तो आशीष जी बिल्कुल सही है कि वो सपने वे नहीं होते जो सही में हम सोते समय देखते हैं। सपने तो वो होने चाहिए जिस सपने के कारण हम रात भर सो नहीं पाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार हम उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग होता है जो नवयुवक की हम बात करें तो वो लोग गाड़ी घोड़े के ही सपने समझते हैं कि हम गाड़ी खरीद लिए तो वही मेरा सपना है। नहीं, वो सपना वो अलग सपना है, एक उपलब्धि प्राप्त करने का जो सपना होता है वो एक अलग होता है।
1: निश्चित तौर पर तो अपन सपना चुनू और सपना के केना पूर्ण कैल जा सके छे ओहि दिशा में आगू बढ़ू तो अहाँ सफल हेबे करब। और जे आदमी सफल होइ छै से अपन अगल बगल के लोक के सेहो सफल करैके दिशा में आगू बढ़े छथि। और कए बेर एहनो होइत अछि कि बहुत बेर हम अहाँके छै कोनो काज करै छी ताहिमे मोन नहि लगैए, जेना अगर गप करी तऽ अगर विज्ञान विषय बहुत आदमीके नीक लगै छनि, बहुत आदमीके खराब लगै छनि, बहुत आदमीके विज्ञान बोरिंग लगै छनि। आओर की छै बहुत बेर हमसब अहाँके सुनलहुँ हँ कि छात्र जीवनके समयमे कि अहाँके विज्ञान बोरिंग अछि, नहि मोन कर रहल अछि पढ़ाइ करैके, मुदा असल जिंदगीमे अगर देखल जाए तऽ विज्ञान बोरिंग नहि अछि, ओकर पढ़ैके आओर बुझैके तरीका हेबाक चाही हमरा अहाँके तरफ, कियाकि विज्ञान हमर अहाँ सबके चारू कात अछि। आइ हमसब मोबाइल पर छी, आइ रेडियो सेटके माध्यमसँ अपने तक हम लोग पहुँच रहल छी, वा अहाँके रसोई घरमे छी, खेलके मैदानमे छी, बरखामे छी, सब ठाम छी, कतौ ने कतौ विज्ञानसँ जुड़ल छी। बस ओकरा कहानीके सङ्गे पड़ोसैके कला हेबाक चाही तऽ विज्ञान बहुत नीक भऽ जाइत अछि। बच्चा फार्मूला बिसरि जाइ छथि मुदा अनुभव नहि बिसरै छथि। गुरुत्वाकर्षण पढ़बाक अछि तऽ सेब खसैके कहानी सुनाएल जा सकैत अछि। वाष्पीकरण पढ़बाक अछि तऽ भीजल कपड़ा धूपमे केना सुखाइत अछि से देखेबाक चाही, तऽ अहाँके ई चीज मोन रहत। ताहि दुआरे कहल जाइ छै विज्ञानके अगर अहाँ रोचक बनबै लए चाहै छी तऽ विज्ञानके किताबसँ निकलि कऽ जिंदगीमे अगर अहाँ आनि लै छी तऽ विज्ञान रोचक लागऽ लगैत अछि। खिस्सा सबके प्रयोग करबाक चाही, जतय न्यूटन, मैडम क्यूरी, APJ अब्दुल कलामके जिज्ञासा भरल खिस्सा सब अछि, तिनका अहाँ बच्चा सबके बीचमे कहि सकै छी, अहाँ प्रयोग कऽ सकै छी। नेबोसँ बैटरी बनेनाइ, दूधमे रङ्गके जादू, अहाँके बैलूनमे पानि भरिके आगिपर रखनाइ, दू मिनटके छोट छोट प्रयोग जे दू घण्टाके लेक्चरसँ बेसी असर कऽ सकैत अछि, आओर एहिसँ विज्ञानके प्रति जिज्ञासा बढ़तनि बच्चा सबके आओर ओ विज्ञान हुनका रोचक लागऽ लगतनि। एकटा जे नीक विज्ञान शिक्षक अछि ओ जवाब नहि दै छथि, ओ सवाल उत्पन्न करै छथि। आसमान नीला क्या अछि, हवाई जहाज उड़ैत केना अछि, बिजलीके तारमे

0: करंट केना दौड़ रहल अछि। आ बच्चा अपनेसँ सोचऽ लगतथि, हुनकर आँखिमे चमक आबि जेतनि आओर इएह जिज्ञासा विज्ञानके जननी अछि।
1: और आज के समय आशीष जी, विज्ञान और तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यदि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि नहीं होगी तो वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई महसूस करेंगे। विज्ञान को रोचक बनाने से विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रचनात्मक तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। इससे वे केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी सीखते हैं।
0: तो आप किछ चले चले समसामयिक घटना के सेहो चर्चा कर ली। तो पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाओल गेल है और सीतामढ़ी में प्लास्टिक कचरा से बेंच बनबे के पहल करे के माननीय प्रधानमंत्री सीएम प्रधानमंत्री अहाँ एक सराहलत है। तो ये अखन समसामयिक घटना के बारे में से हम सब चर्चा करते रही। समय बहुत कम है, तो कम समय के उपयोग करी अपने सबके चले चले फिर एक गीत सुना।

0: आब समय हमरा सबके विदा लय के लेल कहि रहल अछि, तऽ आजुक नमस्कार मिथिला से हमरा आशीष के
1: आ साथ ही साथ आज के संक में कुशल को दीजिए अलविदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार मिथिला, आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे।
1: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।

0: जमाना कोई। सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
2: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
3: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी दरभंगा है, अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने

0: परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत

0: रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा।

0: राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
3: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly

0: 3-0 in Harare yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Anuja. All the dailies talk about the constitution of a high-powered multidisciplinary committee to revamp the National Testing Agency. Hindustan Times headline says, PM unveils Nilekani-led panel for exam reforms. Lauding the Kargil heroes, Prime Minister Modi hails defense, sports and space feats of our country in his Mann Ki Baat program. Prime Minister also highlighted the culture of Olympiads and hackathons steadily growing in India, making him immensely proud, cites the Asian Age. Government issues advisory for seafarers amid rising Black Sea attacks after five nationals killed, reports the Statesman. Financial Express reports solar, wind, power generation jumps over 25%. As per the data shared by adoption authority CARA, 5,000 adoptions made last year, highest in a decade. UNESCO adds France's D-Day landing beaches, Greece's Mount Olympus to heritage list, reports the Indian Express. Ladakh gets first school for children with special needs, writes the Tribune. And finally, making it a golden day for India, Mirabai Chanu completes hat-trick of goals at CWG is a front-page headline in The Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Mirabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bagged silver in men's 60kg class. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकणी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गाँवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गाँवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की माया नाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। ऋषिकांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसवदे को मंजूरी दी थी ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहानात की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज़ सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
3: इस बिल में

0: पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायत शामिल की गई हैं। इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं, जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खसूसी अदालती निज़ाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेजी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद 2024 के फ्रेमवर्क में खातिरख्वाह बेहतरी लाना है। रियासती सरकारों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतजामिया को, सेशन अदालतों को खसूसी टास्क फोर्स अदालतों के तौर पर नामजद करने के अख्तियार दिए जाएंगे, जो मजकूरा कानून के तहत जराइम के खिलाफ खास तौर पर कानूनी कार्रवाई अंजाम देंगी। बिल की शिकों के मुताबिक खसूसी टास्क फोर्स की अदालतें रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की सुनवाई करेंगी, जिनके लिए लाजमी होगा कि वो फर्द जुर्म दाखिल किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएं। न्यूज डेस्क से कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर

0: बिरला ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मेमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन दो हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक उबूरी जंगबंदी के बारे में ताज़ा मुदाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फ़ौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमरीका ने अपनी कार्रवाई बंद की है, पिछली दो रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेट लिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेट लिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों की क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावामी मैच में भारत ने मेज़बान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फ़ोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज़ के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342105050 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये दी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम।

0: राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर वज़ीर आज़म के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फ़ौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियाँ इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्ला बहिर असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान। गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकानी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गाँवों के साथ अपने राबतों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गाँवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की माया नाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: पशु पालकों एवं कृत्रिम गर्भाधान यानी AI से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
4: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT से ही कराएं। AI कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप AI तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी होंगे अध्यक्ष। केंद्र सरकार आज लोकसभा में प्रश्नपत्र लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड के प्रावधान वाला विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने बेगूसराय की कांवर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार समेत संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। और बिहार के उभरते खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट और सावन कुमार का हॉकी में शानदार प्रदर्शन, दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला सम्मान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आज संसद में परीक्षाओं से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक नया विधेयक पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा करने और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: कार्यबल में खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपंडे का, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी कार्यबल का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक आज के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार शरीफ डेयरी प्रोजेक्ट परिसर में प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले सुधा दही और लस्सी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी उद्घाटन करेंगे। समारोह के दौरान सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मगध, तिरहुत, पटना और कोसी प्रमंडल के लिए 8 पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के 300 खुदरा विक्रेताओं के बीच डीप फ्रीजर का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहार शरीफ से निरंजन कुमार।
0: राज्य सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता

0: की तय करती है। एक रिपोर्ट।
1: योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, भवन मरम्मत, शौचालय, रैंप, चहारदीवारी, रसोई शेड, खेल मैदान और डिजिटल ग्रामीण पुस्तकालय सह उत्थान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही गांवों में पक्की गली नाली, लघु नहरों और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्य शेड, कौशल विकास केंद्र और ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे। मुक्ति धामों का सौंदर्यीकरण, आहार पोखर और तालाबों का जीर्णोद्धार, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा व्यक्तिगत पशु शेड निर्माण भी प्राथमिकता में शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इन योजनाओं को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बेगूसराय स्थित एशिया की सबसे बड़ी कोखुर यानी ऑक्सबो झील माने जाने वाली कांवर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बूढ़ी गंडक नदी के घुमाव से बनी इस अनोखी ऑक्सबो आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर अधिकरण ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि चेरिया बड़ियारपुर स्थित कांवर झील को वर्ष 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। पहले लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैली कांवर झील अब जलस्तर घटने और अतिक्रमण के कारण कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती जा रही है। पीठ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जलस्तर में लगातार गिरावट और पारिस्थितिकी क्षरण के कारण झील में मछलियों की संख्या तथा जैव विविधता में भारी कमी आई है। कई स्थानीय मछली प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है या झील के कुछ हिस्सों से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
0: प्रदेश में ग्रामवार गन्ने की खेती का रकबा निर्धारित करने के लिए राज्यव्यापी सर्वे की शुरुआत की गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने सभी जिलों के एक पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। जीपीएस तकनीक और ऐप आधारित डेटा संग्रह के माध्यम से प्रत्येक खेत और गन्ने की किस्म का विवरण जुटाया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य कम रकबे वाले क्षेत्रों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना है। अभियान के दौरान गन्ना किसानों की आईटी भी बनाई जाएगी। देश भर में आयुर्वेद शिक्षा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा कोठेकर ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल पटना के शताब्दी समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत 10वीं के बाद विद्यार्थी 2 साल का आयुर्वेद पाठ्यक्रम कर सकेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी और सावन कुमार ने शानदार प्रदर्शन के साथ देश की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान पाने का गौरव हासिल किया है। क्रिकेट में जिम्बाब्वे को तीन टी20 मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले वैभव को पहला प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है। वहीं ओमान के मस्कट में आयोजित युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत में पटना निवासी सावन कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षक तथा फाइनल के

0: के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया। मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से एक बार फिर मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आएगी। इधर विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 27 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि अररिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश में बाढ़ के दौरान होने वाली बीमारियों के कारण और उपचार पर विशेष अध्ययन कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर रिसर्च को सौंपी है। पायलट परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन के दौरान बाढ़ का उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वसन रोगों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इस अभियान में संबंधित पीएचसी, सीएचसी, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को जोड़ा जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता टिम्पी गर्ग पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक होंगे। वे 1 सितंबर को हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। श्री गर्ग वर्तमान महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदेश में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना से 258 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक जेल भेजे गए प्रमुख लोगों में भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव और 4 छात्र नेता शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में उन्होंने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सनहा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना के राजीव नगर से एसटीएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2,67,00,000 रुपए की साइबर ठगी के आरोपित नीलमणि को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर हावड़ा के एक कारोबारी को ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने का आरोप है। सहरसा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची 2 पुलिस टीमों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इन घटनाओं में 1 थानाध्यक्ष, 2 जमादार सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को देशी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स। हिन्दुस्तान लिखता है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी में प्लास्टिक कचरे से बेंच बनाने की पहल को सराहा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, हर जिले के शहरी क्षेत्र में शिक्षक सरप्लस, अब गांव में होगी तैनाती। प्रभात खबर ने लिखा है, राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, रोहतास और दुर्गावती में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी सरकार। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी होंगे अध्यक्ष। केंद्र सरकार आज लोकसभा में प्रश्न पत्र लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड के प्रावधान वाला विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बेगूसराय की

पर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। और बिहार के उभरते खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट और सावन कुमार का हॉकी में शानदार प्रदर्शन, दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला सम्मान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
3: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
4: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
3: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
7: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
8: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
9: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
10: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
9: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
8: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
11: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481।

0: मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। भोर होते उठ जाओ, किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि। फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत, उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर
6: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से है।

0: अकड़ते हुए लेक्चर के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा और स्टेज पर भी उनकी वफात हो गई। उनकी तदफीन उनके आबाई शहर रामेश्वरम में हुई और उनके कारनामे आज भी जिंदा और जावेद है। उन्होंने न कोई शादी की और न कोई जायदाद बनाई, बल्कि करोड़ों इंसानों के दिलों में अपना घर बना लिया। उनकी किताबें आज भी लोगों को रास्ता दिखाती हैं, रहनुमाई करती हैं, हौसले बढ़ाती हैं और नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। आज 27 जुलाई उनकी यौम वफात पर हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। तो सामीन, अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब और अब पेश खिदमत है महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा। आज के मुशायरे में जो शोराए किराम शिरकत फरमा है उनके आसमाए गिरामी हैं जनाब एजाज अहमद, जनाब एस एम एजाज रसूल, जनाब तारिक अनवर और निजामत है शहदा हसन की। आपकी समातों के हवाले।
1: मुशायरे ने जुबान अदब की तरवीज व अशात में और इसके फरोग में नुमाया किरदार अदा किया है। एक तरफ इसने जहां अदब के गुल बूटों की आबियारी का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ मुशायरे ने आपसी भाईचारा और मोहब्बत की फजा को मजबूत करने में भी अहम किरदार अदा किया है। मुसर्रत की बात यह है कि इस सिलसिले में आकाशवाणी पटना ने भी हमेशा खूबसूरत स्टूडियो मुशायरा महफिल सुखन आरास्ता करके अपनी अदब नवाजी का बेहतरीन सबूत पेश किया है। आज इसी तनाजुर में महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा का इनाकाद किया जा रहा है, जिसमें अदबी दुनिया में डॉक्टर एजाज असूल के नाम से लोग जानते हैं शरीक है। इनके अलावा एजाज अहमद तशरीफ फरमा है और डॉक्टर तारिक अनवर तशरीफ रखते हैं। तो मैं आज के मुशायरे का आगाज मुनफरिद लबो लहजा के शायर एजाज अहमद से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम बलागत निजाम से हमें महजूज फरमाए।
2: मतलब आफिश खिदमत है
1: इरशाद।

0: बाको
1: तपते हुए सहरा से मरूब नहीं होती, तपते हुए सहरा से मरूब नहीं होती, किस खेत

खिसक न जाए कहीं पाँव से जमी अपनी, खिसक न जाए कहीं पाँव से जमी अपनी। वाँ, वाँ, वाँ, वाँ।

0: औरों को।
1: अभी गजल सुना थे जनाब एजाज अहमद, और अब मैं इनके बाद दावत सुखन दे रहा हूँ जनाबे तारिक अनवर, आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजे।
2: गजल का मतलब हाजिर करता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।
2: जब से तेरा प्यार मेरी जिंदगी में आ गया।
1: वाह बहुत अच्छा।
2: जब से

0: जब से तेरा प्यार मेरी जिंदगी में आ गया।
1: वाह वाह वाह।

0: महसूस कभी कीजिए अशकों की रवानी।
1: बहुत खूब।
2: आप थे डॉक्टर तारिक अनवर, नहायत खूबसूरत अंदाज से पूरी गनाइयत के साथ गजल सरा थे
1: डॉक्टर एजाज रसूल साहब नवादा। अपना कलाम से सामईन को महसूस करें।
2: मतला मुलाजा फरमाइए। निगाहों में कभी आसाइशे मंजिल नहीं रखते। निगाहों में कभी आसाइशे
1: मंजिल नहीं रखते।
2: हरीफे मौज दिल में ख्वाहिशे साहिल नहीं रखते।
1: वाह।
2: निगाहों में कभी आसाइशे मंजिल नहीं रखते। हरीफे मौज दिल में ख्वाहिशे साहिल नहीं रखते। शेर देखिए कि हमारा तजर्बा कहता है वो बाजी न जीतेंगे।
1: वाह।
2: हमारा तजर्बा
1: कहता है
2: वो बाजी न जीतेंगे। जो रखते हैं कई हथियार लेकिन दिल नहीं रखते। हमारा तजर्बा कहता है वो बाजी न जीतेंगे। जो रखते हैं कई हथियार लेकिन दिल नहीं रखते। और हमारे दरमियाँ ऐसे भी कुछ अफराद रहते हैं। कि जो अपनों में भी अपनी कभी मुश्किल नहीं रखते। हमारे दरमियाँ ऐसे भी कुछ अफराद रहते हैं कि जो अपनों में भी अपनी कभी मुश्किल नहीं रखते। दयारे इश्क में उनको जफर याबी नहीं मिलती। तवज्जो चाहूंगा कि दयारे इश्क में उनको जफर याबी नहीं मिलती। जो दिल में वहम रखते हैं यकीन कामिल नहीं रखते। जो दिल में वहम रखते हैं यकीन कामिल नहीं रखते। और नफी को छोड़कर असबाब की जानिब न बढ़ते घर। तो फिर हालात हमको भी किसी काबिल नहीं रखते। नफी को छोड़कर असबात की जानिब न बढ़ते घर। तो फिर हालात हमको भी किसी काबिल नहीं रखते। हमारा दिल तो गैरों के दुखों में भी तड़पता है। न समझे दुख जो औरों का हम ऐसा दिल नहीं रखते। निगाहों में कभी आसाइशे मंजिल नहीं रखते। हरीफे मौज दिल में ख्वाहिशे साहिल नहीं रखते। और दूसरी गजल के चंद अशआर मुलाजा फरमाइए। हमको तूफान में आता है गुजारा करना।
1: वाह
3: क्या बात।
2: हमको तूफान में
1: आता है
2: गुजारा करना। आपका काम

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। फिल्म है आन मिलो सजना।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है इस अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी, आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर, हमर सबक

0: वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है फिल्म दिल ही तो है से। आशा भोसले और साथियों की आवाज है। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत दिया है रोशन ने।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए उदित नारायण शान और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में। हिमेश रेशमिया का संगीत है, फिल्म है हमराज।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं।

अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं काशीनाथ झा किरण।

मेरू में 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे पंडित जसराज से कबीर भजन राग शुद्ध वड़ाड़ी में।

शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना। कलाकार थे पंडित जसराज। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतन माला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहेब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।

0: आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है, और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।

0: और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं कि बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
0: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ,
3: देखिए,
4: बैठो, मुझे छोड़ दो। साथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़ दो।
5: ये मेरी
4: अंगूठी ले लो, छोड़ दो।

0: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुली माल के बारे में सब कुछ बताया।
1: नाथ,
2: महात्मा,
1: प्रभु,
2: महात्मा,
3: प्रभु, प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
4: वहाँ अंगुली माल है।
3: हाँ प्रभु।
4: वो बहुत बड़ा डाकू है।
5: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
4: जाए।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहाँ?
0: ये गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्य पूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: तुमको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे?
2: अनुमति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
3: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्म स्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
3: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श

0: मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
0: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से

0: लेकर समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
2: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
2: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
2: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
2: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी,
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
3: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
4: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल

0: बुल्की बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: एनसीईआरटी उमंग। अभी आपने सुना प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 12:00 और ये समय होता है नए फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म मिशन मजनू के इस गीत के साथ।

राजभवन का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं। फिल्म मिशन मजनू से इस गीत को लिखा है रोहित शर्मा ने और संगीत दिया है राघव सचर ने।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जवान का ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने, संगीत निर्देशन अनिरुद्ध रविचंद्र का।

अब सुनवा रहे हैं आपको वरुण जैन, रोमी और अनुराग सैकिया का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा कौसर मुनीर ने, संगीत से सजाया अनुराग सैकिया ने। फिल्म का नाम है द डिप्लोमेट।

लीजिए, आप सुनिए फिल्म माँ का ये गीत श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, संगीत निर्देशन रॉकी शिव का।

अरुण देव यादव को अभी आप सुन रहे हैं, जिस गीत को लिखा है जूनी ने, संगीत निर्देशन अनुराग सैकिया का, और फिल्म का नाम है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म आंख मिचौली से। गीत के बोल लिखे हैं प्रिया सरैया ने, संगीत निर्देशन सचिन जिगर का और गायक कलाकार हैं जोनिता गांधी, शाश्वत सिंह और सचिन और जिगर।

लापता लेडीज में भी आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह को। गीत के बोल लिखे हैं प्रशांत पांडे ने और संगीत निर्देशन राम संपत का।

ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म का नाम है आंखों की गुस्ताखियां। आवाज जुबिन नौटियाल की, गीत के बोल लिखे हैं कौशल किशोर और विशाल मिश्रा ने, संगीत निर्देशन विशाल मिश्रा का।

श्रोताओं, जुगिन नौटियाल के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ ही नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुछ और नए फिल्मी गीत लेकर आएंगे हम आपके लिए शाम 5:40 पर। और अब समय है श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार का।

नाड़ी संसार सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक खास मुलाकात और ढेर सारी मीठी बातों के साथ। आज के इस अंक में हम चर्चा के जरिए आपको ले चलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय की ओर, साथ ही आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे फिल्मी गीते। कार्यक्रम के बीच में एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत सुनवाएंगे एक खास वार्ता जहां आपको मिलेगा बहुत ही उपयोगी जानकारी। तो चलिए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज की मुख्य चर्चा की ओर। बहनों, जल संचय का महत्व, जल की सुरक्षा करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। जल ही जीवन का आधार है और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भविष्य के जल संकट से बचने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। बहनों, पानी की हर बूंदे हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। जब गर्मी में पानी की किल्लत होती है तो उसका सबसे बड़ा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ती है। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने या नहाने और सबसे बढ़कर पीने के लिए साफ पानी न मिलना बहुत बड़ी संकट हो जाती है। बहनों, पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, यह हमारी सेहत, कमाई, पढ़ाई, खेती और पर्यावरण यानी पूरे जीवन रेखा का आधार है। साफ पानी अगर न मिले तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया और पेट की बीमारियां भी तेजी से बढ़ने लगती है। यहां तक कि पानी न मिलने से फसलें भी सूख जाती है और अनाज का संकट भी खड़ा हो जाता है। पानी बिना ना तो कारखाने चल सकते हैं और न ही बिजली बनती है। इसी बड़ी ज़रूरत और संकट को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस को जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन की शुरुआत की थी। बहनों, यह अभियान इसीलिए भी शुरू किया गया ताकि बारिश के पानी को बेकार बहने से रोका जा सके और भूजल स्तर को ऊपर उठाकर देश को जल संकट से बचाया जा सके। बहनों, सरकार अपनी काम कर रही है, लेकिन आम जनता के सहयोग के बिना हम इस मिशन को

को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी को मिलकर हर देशवासी को एकजुट होकर पानी संरक्षण का करना होगा। हमें बारिश के पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करना होगा। इसके लिए हम बहुत ही आसानी व्यवहारिक कदम उठाकर पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। बहनों, आप अगर चाहें तो आंगन या खुले हिस्सों में बड़े ड्रम, बाल्टी या टब रखकर पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे आप पौधे को सींचने या पोछा लगाने में उपयोग कर सकते हैं। खेतों या ढलान वाले रास्ते पर जहां पानी बहकर निकल जाता है, वहां पत्थर या मिट्टी की मेड बनाकर पानी के बहाव को रोक सकते हैं। इससे पानी इकट्ठा होता है और जमीन के अंदर भी सोखता है। यह बहुत उपयोगी हो सकता है। बहनों, पेड़ की जड़ें बारिश के पानी को बहने से रोकती हैं और उसे जमीन के भीतर भेजने में मदद करती हैं। बारिश का पानी इसमें ये छनकर सीधे जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे आपके कुएं, हैंडपम्प, वाटर वाल्व, वाटर लेवल का जो स्तर होता है वो ऊपर उठता है और हमें पानी की दिक्कतों से बचाता है। अगर आपके पास पानी स्टोर करने के लिए बड़ा टैंक नहीं है तो छत के पाइप को जमीन में गड्ढे बनाकर रख दें और पानी को संरक्षण करें। ये पानी अपने आप जमीन को धीरे धीरे सोखते हुए ये पानी को अपने जमीन के अंदर सोख लेगा, जिससे हमें गर्मी से भी बचाव होती है। जब बारिश का पानी जमीन के अंदर सोखता है तो हमें बारिश की सहायता से हमें ठंडी हवाएं मिलती हैं, हमारा खेत खलियान खिल उठता है, साथ ही हमें पानी के संकट से बचाता है। बहनों, बारिश का पानी सहेजने के लिए बड़े बजट की ज़रूरत नहीं, बल्कि थोड़ी सी सूझबूझ और नियत की ज़रूरत है। अगर हम समझदारी के साथ सजग रहकर पानी की बचत भी कर सकते हैं, बारिश का पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की बचत भी कर सकते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, अपने घरों में बर्तन धो रहे हैं, तो हम जब भी हमें ज़रूरत हो तभी हम नल को खोलें, ब्रश करते समय पानी की जब ज़रूरत हो तभी करें।

अगर हम समझदारी के साथ सजग रहकर पानी की बचत भी कर सकते हैं, पानी बारिश का पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की बचत भी कर सकते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, अपने घरों में बर्तन धो रहे हैं, तो हम जब भी हमें ज़रूरत हो तभी हम नल को खोलें, ब्रश करते समय पानी की जब ज़रूरत हो तभी करें। झरना में हम जब नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी व्यर्थ हो जाता है, तो कोशिश करें बाल्टी या टब में डालकर नहाएं। बच्चों को भी बताएं पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और पानी का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाना है। तो बहनों, इस संकल्प के साथ पानी का संरक्षण अवश्य करें। तो आइए चलते सुनते हैं एक प्यारा सा ये गीत।

0: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम नाड़ी संसार में। बहनों, इसी के साथ फिर से बढ़ती हूँ अपनी चर्चा की ओर। सजना सवरना और खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद होता है, चाहे शादी ब्याह का माहौल हो या फिर हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या। खुद को निखारना हर महिला के सहज स्वभाव और खुशी का हिस्सा होता है। और हो भी क्यों ना बहनों, हमारी खूबसूरती और आत्मविश्वास को निखारने का एक जरिया है सजना सवरना। हम सभी महिलाओं की खुशी है, लेकिन अपनी स्किन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी भी है। इसका उपयोग करने से पहले हमेशा थोड़ी सावधानी और सतर्कता जरूर रखनी चाहिए। कभी भी क्रीम, सीरम या मेकअप प्रोडक्ट कितनी भी महंगी या प्रसिद्ध क्यों ना हो, उसे सीधे अपने चेहरे पर ना लगाएं। लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करें। आपकी त्वचा अनमोल है, इसलिए सवरने से पहले सुरक्षा का यह छोटा सा कदम उठाना कभी ना भूलें। बहनों, उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें और वह प्रोडक्ट कब बनी है ये भी जानकारी अवश्य रखें। ये सब देखकर ही चेहरे पर अप्लाई करें। बहनों, लिपस्टिक, काजल और सीरम जैसे चीज़ों में की गई छोटी छोटी सी चूक आपके चेहरे और आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो किसी भी क्रीम, सीरम, काजल, लिपस्टिक को लगाने से पहले उसकी जांच अवश्य करें, उनका एक्सपायरी डेट अवश्य देखें और अपने स्किन को भी देखें कि आपके स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट सूट कर सकता है। इसकी जानकारी लेकर ही इसे लगाएं। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता अपनाकर और अपनी खूबसूरती के साथ अपनी सेहत का भी आप जरूर ख्याल रखें। तो हम महिलाओं को सजना संवरना तो है ही, लेकिन अपनी सुरक्षा को अपने

हाथों में अवश्य रखना है। पूरी जानकारी के साथ किसी भी प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर लगाएं, चाहे आँखों में चाहे होठों पर हो, और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। तो इस ख्याल को रखते हुए आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, ये गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ बढ़ती हूँ फिर से अपनी चर्चा की ओर। बहनों, अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है कि आप जल संरक्षण को किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं और अपने चेहरे को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही बहनों, आज 27 जुलाई का दिन है और आज का दिन बहुत ही अत्यंत खास दिन है। आज 27 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक दिन है। आज ही के दिन 2015 में हमने देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और युवाओं के मार्गदर्शक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खोया था। बहनों, ज्ञान, सादगी और राष्ट्र सेवा की जो मशाल डॉक्टर कलाम ने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी हर भारतीय के दिल में जल रही है। भौतिक रूप से भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने विचारों और आदर्शों के रूप में वे हमेशा अमर रहेंगे। ऐसे महान मार्गदर्शक और देश की मिसाल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आज हम सब सत सत नमन करते हैं। बहनों, डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा और देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए समर्पित कर दिया। तो बहनों, आइए उनके इस राष्ट्र प्रेम को नमन करते हुए हम सब मिलकर यह देशभक्ति गीत सुनते हैं।

बहनों, आज ही के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल GRPF का स्थापना दिवस भी है। 28 दिसंबर 1939 को संसद के अधिनियम के बाद इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल GRPF का नाम मिला। उनके इसे अदम्य साहस, निडरता और बलिदान को नमन करते हुए हर साल GRPF दिवस मनाया जाता है। इन सभी जवानों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, इन्हीं बातों के साथ

बहनों, जीआरपीएफ के जवान देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने, नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने तथा प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहनों, इन सभी जवानों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम का समय हो चुका है। इसी के साथ दीजिए प्रेरणा को अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष।

0: महोदय।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे आप दोपहर 1:00।

15 मिनट पर। दोपहर 2 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और दोपहर 2:10 पर होता है रोजगार सूचना। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर फिल्म संगीत।

तीन बजे आनंद ले सकेंगे आप कुछ लोक गीतों का। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाती है। इसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण कुसुम। विद्यापति गीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण समय होता है शाम 6:25 पर।

शाम 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सा और शाम 7 किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार 7:30 पर। रात्रि 8 सुनेंगे संसद समीक्षा और रात्रि 8:15 पर सिंगरहार। आठ पर समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। और रात्रि 10 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। रात्रि 11 हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। सभा की समाप्ति रात्रि 11:10 पर की जाएगी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जिगरी दोस्त से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पार्श्व गायिका के एस चित्रा के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म कोई मिल गया के इस शीर्षक गीत के साथ।

श्रोताओं, इस गीत में के एस चित्रा का साथ दिया है उदित नारायण ने। इस गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म परदेस का ये गीत। के एस चित्रा का साथ दिया है इस गीत में शंकर महादेवन ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

केएस चित्रा का साथ दे रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम। फिल्म का नाम था रोजा। गीत के बोल लिखे थे पीके मिश्रा ने, संगीत निर्देशन एआर रहमान ने किया था। इसी फिल्म का एक और गीत सुनवाते हैं आपको।

ये गीत हमने लिया है फिल्म बॉम्बे से। गीतकार महबूब, संगीतकार AR रहमान, आवाज चित्रा की।

और ये गीत लिया है हमने फिल्म क्रिमिनल से। इस गीत में चित्रा के साथ आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की भी। गीतकार इंदिवर, संगीतकार अनु मलिक।

इस गीत को लिया है हमने फिल्म विरासत से। इस गीत में चित्रा का साथ दे रहे हैं कुमार सानू। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन अन्नू मलिक का है। ये

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब आपको लिए चलते हैं अपने पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार एवं इलाकाई खबरों के लिए। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस विधेयक पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया।

0: सर्वोच्च न्यायालय परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा है कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन से परीक्षा प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। वे संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में डेयरी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। नालंदा के बिहार शरीफ में विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में उत्पादित डेयरी उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी शुभारंभ किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कल शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए उद्योग भवन के पास समाप्त होगा। रोड शो में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। इधर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में आज रोड शो करेंगे। राजद के रोड शो की शुरुआत जक्कनपुर से होगी। जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे उत्साह के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बसुआ में सबसे अधिक 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। पश्चिम चंपारण के बगहा में बनने वाले 100 बेड के अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास किया गया। स्थानीय विधायक राम सिंह ने इसकी नींव रखी। इसके साथ ही पतिलार में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 21 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा में हिजब मुखालिफ के हंगामे के दौरान आज अवामी इम्तहान तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल ऐवान में पेश किया। यह बिल अवामी इम्तहान एक्ट 2024 में तरमीम की तजवीज़ लाता है। बिल पेश किए जाने के दौरान अरकान हिजब मुखालिफ ने नीट मामले पर तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस कार्रवाई पर चर्चा का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इम्तहान में बेहतर

0: तरीके की समत में यह बिल पहला अहम कदम है और इस पर मुनासिब गुफ्तगू होनी चाहिए। उन्होंने इराकीन से तावुन और मुसबत गुफ्तगू की अपील की। हंगामा जारी रहने पर ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया गया। हिजब मुखालिफ के हंगामे के सबब चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट इम्तहान पेपर लीक मामले के मद्देनज़र तलबा के मुजाहरे के दौरान पुलिस ताकत के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के इल्ज़ाम से मुतालिक कई रीटों पर कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जवाय माल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जख्मी पुलिस अमलों की कुंबा की रीट पर भी समाअत करने का फैसला लिया है। इस बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पुरअमन और जायज एहतजाज मुजाहरा आइनी हक है। मरकजी हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो अदालती कार्रवाई में तावुन करेंगे। बिहार शरीफ में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में डेयरी के शोबे को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में तैयार होने वाली डेयरी मसनूआत को मुल्की और आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए एक वसी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आला ने 20 मैट्रिक टन रोजाना पैदावार की सलाहियत वाले दही और लस्सी प्लांट का संग बुनियाद रखा। इसके साथ ही कम्फर्ट के जेर एहतमाम जारी APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब वज़ीरे आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, देही तरक्की के वजीर शरवण कुमार, मवेशी परवरी और माहीगीर के वजीर नंद किशोर राम समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। बांकीपुर असम्बली जिमनी इंतखाब के पेश नज़र सभी जमातों ने तशहीर में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कल शाम तशहीर का शोर थम जाएगा। इससे कबल आज भाजपा के कौमी सदर नितिन नवीन पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार की हिमायत में रोड शो कर रहे हैं। पार्टी के रियासती सदर संजय सरोगी ने बताया कि रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर मुख्तलिफ राहों से गुजरते हुए उद्योग भवन के पास इख्तिताम पजीर होगा। रोड शो में पार्टी के कई सीनियर लीडर शामिल हो रहे हैं। इधर राजद के कारगुजार सदर तेजस्वी प्रसाद यादव भी पार्टी उम्मीदवार रेखा कुमारी की हिमायत में आज रोड शो करेंगे। राजद की रोड शो की शुरुआत जकनपुर से होगी। जनस्वराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर असेंबली हलका के मुख्तलिफ महलों में लगातार अवामी राबता और जलसा कर रहे हैं। वहीं कई आजाद उम्मीदवार भी जोश के साथ तशहीर में लगे हुए हैं। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून की सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया समेत रियासत के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी इलाकों में कई मकामात पर बारिश की इंतबाह जारी की है। दरी असना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बसुआ में सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मगरबी चंपारण के बघा में बनने वाले 100 बेड के सब डिविजनल अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया। मकामी रुकन असम्बली राम सिंह ने इसका संगे बुनियाद रखा। इसके साथ ही पतिलार में 30 बेड के कोऑपरेटिव हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। अररिया जिला के अलग अलग थाना हलकों में खसूसी छापामारी मुहिम चलाकर पुलिस ने 21 जराय पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी के 1819 मोबाइल फोन, ममनुआ कोडिन सिरप और दीगर काबिल एतराज़ अशिया बरामद किए गए हैं। अरवल जिला के करपी ब्लॉक के परियारी पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से कानूनी बेदारी कैंप का इनाकाद किया गया। कैंप में लोगों को मुख्तलिफ कानूनी तजावीज़ की मालूमात फराहम की गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। श्रोताओं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 395 पदों के लिए एसओ का पद निकाला है। आवेदन 21 जुलाई 2026 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है unionbankofindia.bank.in। यहां जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में एलबीओ के कुल 545 पद हैं। इसके आवेदन 20 जुलाई 2026 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in है, यहाँ जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026, कुल पद 6557, आवेदन 30 जून 2026 से लेकर 29 जुलाई 2026 यानी परसों तक किए जा सकते हैं, इसमें कम समय बचा है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा टेक्नीशियन के लिए 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 33 वर्ष है। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR, कुल पद 200, आवेदन 20 जुलाई 2026 से 19 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष है। ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in।

0: एन एफ एयर रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 कुल पद 6,777 आवेदन 20 जुलाई 2026 से 19 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष है। ऑफिशियल वेबसाइट www.nfrrecruitment.in।
1: Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the
0: Rajasthan District Counter Stenographer Grade 3 कुल पद 163 आवेदन 20 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in। विशेष जानकारी के लिए कृपया संबंधित रोजगार सूचना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो रहा है दोपहर समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश जाएगा।
1: अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू।

0: अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर

0: प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
1: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
3: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे, साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का उठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
5: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम

0: महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म शोले के इस गीत के साथ।

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म शोले का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको अंकित तिवारी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, संगीत निर्देशन अंकित तिवारी का। फिल्म का नाम है एक विलेन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको मुकेश और कंचन की आवाज में। फिल्म का नाम है धर्मात्मा। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। गीतकार गौहर कानपुरी और संगीतकार राज कमल।

अनजान का लिखा हुआ ये गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

ये है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, आवाज किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है चलते चलते। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, संगीत निर्देशन बप्पी लाहिरी का।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है लोक गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस देवी गीत के साथ।

जयप्रकाश यादव के स्वर में भी आप सुन रहे थे ये देवी गीत। आइए अब सुनते हैं ममता कुमारी के स्वर में ये सोहर।

राखी कुमारी के गाय इस नचारी के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 और 9 सेकंड हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
1: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा, ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निमोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो, तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है? दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
2: चाचा, बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
1: बेटा, ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं।

0: मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
1: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
2: चाचा, बापू से ये हाल कहां है?
0: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
2: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
0: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
2: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
0: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
2: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
0: अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा।

0: मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
1: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
2: बिल्कुल,
1: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
2: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज है दीपा।
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों सखियां यहाँ बैठे, कि अगर जीवन में भरोसा ना हो ना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना
0: हाँ।
1: हो, तो ये अगला जो जो एक घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
0: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे, और वाकई बहुत अच्छे बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
0: हाँ।
1: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
0: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यवसायिक तौर पर दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से।
0: हाँ। हाँ।
1: और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है, तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
0: ये तो बात सही
1: है। बल्कि कई बार तो किसी के साथ काफी समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता,
0: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है। कस्में खाना, रस्में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे। और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया, ये बातें बहुत मायने रखती
1: हैं। बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि दो जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए।
0: हाँ।
1: ऐसा नहीं होता है ना।
0: बिल्कुल नहीं होता।
1: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों।
0: बहुत सही बात
1: है ना। या फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा।
0: हाँ।
1: इसलिए जब आपस के जो

0: लोग के बीच में संबंध चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
1: भरोसा, यानी विश्वास। हाँ, बहुत सही बात है।
0: और जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
1: दीपा, बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता। बहुत छोटी छोटी सी बातों पर भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा, माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्ते तोड़ देते हैं। इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
1: बिल्कुल, कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जब हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है।
0: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
1: तो बिल्कुल, हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
0: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
1: हाँ,

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है,
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है। यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो वाकई दुख पहुंचता है।
1: और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है।
0: और उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें, वो बहुत भरोसेमंद है, समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे की,
0: भरोसे की। और बहुत सारे संदेश आए हैं आगे, उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ ऐसे शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनाकर बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ पर ये बात किसी को बताना मत, लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है, दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
1: इसी तरह से एक और संदेश है, इसमें हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था, वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा, पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा।

0: रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहां मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
1: तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है।
0: और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान है, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
1: बिल्कुल, एक संदेश और बहुत सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बिजली में बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसे एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीजों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहते हैं कि सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है। ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नजदीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें, और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें, यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए, इसका ख्याल रखें। बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
0: और घर में जो अर्थिंग के तार होते, कई बार देखते हैं हम, तीन तार होते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में, और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है, तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग एक गड्डी, पालक एक गड्डी, बथुआ एक गड्डी, मेथी एक गड्डी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर, और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी के मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसे इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है, उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो आप अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा आसान
1: हो जाता है। और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं।

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
1: जी।
2: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।

0: जी
1: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
0: जी
1: देखूं तो भी काफी है, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
0: क्या
1: तो
0: बात है
1: शुक्रिया एक बार
0: जी
1: और।
0: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
1: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था,
0: ओके
1: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली।
0: हाँ
1: और मैंने बीएससी भी लिया था, और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
0: ओके
1: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे, दूसरी बात थी कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी, लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूं पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि
0: जी
1: एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
0: जी
1: पहले
0: जी
1: साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको 1 साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है, क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए, खुद की
0: जी
1: प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर।
0: जी ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
1: जो टिपिकल टर्म है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है,
0: जी
1: ऑफ्थेल यानी आई, तो आई सर्जन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है।
0: जी इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
1: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5 7 8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं,
0: जी बिल्कुल
1: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था, प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या
1: जी
0: आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
1: जी
0: हैं?
1: जी
0: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
1: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो किकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें, तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और

0: के बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख, एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए,
1: कोई फॉर्मूला बताया गया
0: 20-20-20 फॉर्मूला है
1: जी,
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन एक जनरल है कि आप एक घंटे में एक टाइम तो एक 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता है।
0: और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो LED है, पहले LCD थे
1: जी,
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक LCD स्क्रीन थे, अभी LED स्क्रीन आए हैं, और LED स्क्रीन जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो ज्यादा चमकीली होती है,
0: ज्यादा चमकीली रहती है, तो उसका जो ब्राइटनेस रहता है तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है
1: जी।

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरदर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है,

0: आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले, लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं। और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है। और हमारे पास पेशेंट, आप विश्वास नहीं करेंगे, कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
1: अच्छा।
0: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है। हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी, बच्चों में भी देते हैं, जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
1: जी,
0: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं।
1: ओके,
0: अब समझे, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, अब शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
1: सस्टेन करना मुश्किल
0: होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती है। जी,
1: क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा। तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिरदर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है, वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है।
0: नहीं नहीं, आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
1: जी जी,
0: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
1: जी,
0: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं। बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
1: जी जी,
0: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है, वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है। जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं, वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है, वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं।
1: जी जी,
0: ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
1: अच्छा,
0: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं, उनका शेप साइज, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह, उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में, ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आप आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए, आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि उस बीमारी में, वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है।
1: जी जी,
0: ग्लोकोमा जो है, मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूं आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है, अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए, आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
1: ओ गॉड,
0: तो जी, क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है।
1: ओके,
0: आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है
0: और उसका कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई
0: रोशनी गई
1: एक उम्र

0: के बाद जी, चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
1: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराए।
0: उसका फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
1: साल में एक टाइम
0: जी,
1: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सेम चीज है,
0: कॉमन सेंस,
1: कॉमन सेंस है।
0: 40 हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
1: 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है।
0: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं।
1: संभावना 50% है, माता के साइड से या पिता के साइड से।
0: जी जी,
1: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे ही नहीं कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहां पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता।
0: जी,
1: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहां से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहां से आ गया।
0: सही बात,
1: कहीं मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं,
0: पूरे फैमिली ट्री।
1: तो बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती है, हमको विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीज में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने, 1 साल, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक दो घंटे निकालिए। सिंपल,
0: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
1: जांच
0: के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह।
1: जी,
0: जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं
1: जी।
0: यहां एक दिलचस्प बात ये है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा
0: जी।
1: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया
0: जी।
1: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में, तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं
0: जी जी।
1: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अब समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है
0: जी,
1: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए
0: जी।
1: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
0: जी,
1: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में, कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
0: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
1: एक बात, मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
0: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
1: एग्जैक्टली,
0: ये दे रहा है मैं लूं कि नहीं लूं।
1: एग्जैक्टली, तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं
0: जी,
1: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी, वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
0: डॉक्टर नहीं है
1: जी। ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है, हाँ वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है, चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है
0: जी।
1: लेकिन अभी

0: शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये है। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए, तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होने चाहिए।
1: बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं
0: जी।
1: ये जो है ये मुसीबत की जड़ है, इससे बचना चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता
0: जी,
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है, वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर तक।
0: देखिए, ये एक साइंस है
1: जी,
0: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना, ज्यादातर लोग आते थे दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं। कोई भी हो, बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, से लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं।
0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का है, 50 साल पहले का कंसेप्ट है।
1: जी, जी जी।
0: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं
1: जी,
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे है, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारी
0: और काम रहते हैं उनका भी, तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: जरूर
1: उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए।
0: अच्छा। श्योर।
1: तो यहाँ गाना सुनते हैं।
0: ओके, जरूर,
1: है ना।
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी फिल्म का नाम? 9-2-11।
0: बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स
0: जी,
1: में
0: जी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट हैज वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं. लेकिन एक सीधी चीज है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नजदीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके भाई, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नजदीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा नजदीक ले रहा है. ये दूसरी चीज है, टीवी के नजदीक जाना या तो बहुत नजदीक से लेके पढ़ना. तीसरी चीज है, काफी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है.

0: ये ज्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फर्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए। तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है। तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है। और अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है, इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, तो आंख बाहर निकल जाती है। आपने दोनों देखा रहेगा, बच्चों में एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए।
1: जी,
0: तो ये जो है अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है।
1: जी। और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी।
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है जो कि बीच की किकी रहती है उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए।
1: जी, कई बार तिरछी आंखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज्यादातर, कमजोरी के वजह से भी होती है। अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं। शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है। अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कई गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं। अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है
1: जी
0: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना चाहिए और वो तमाम चीजें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
0: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं,
1: जी
0: वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता है। एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो हम
1: जी
0: करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको
1: जी
0: संतुलित आहार कहते हैं।
1: बिल्कुल
0: आप कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जिसके अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है।
1: जी
0: तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सभी बाहर जाइए बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल, मैं देख रहा हूं क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल, आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे पीएचडी आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और
1: विद्वान
0: सभी
1: लोग हैं
0: बहुत ही हमसे बड़े पीएचडी हैं सारे।
1: जी
0: अब बीच में ही मैंने कहां पे एक पोस्ट देखी थी जहां पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियां ऐसे रगड़ो तो आपके आंख का नंबर चले जाएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि
1: ओके
0: डॉक्टर साहब अगर हम आपके ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे मतलब कर लगे रहो बोला तो कितना टाइम, मतलब लगे रहो आप ही आप मुझे आके बताओ तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, जीएम डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है,
1: बिल्कुल
0: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं।

0: आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, बड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी। इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं
1: जी,
0: जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो
1: उसके
0: तो
1: लिए अलग तरह की सावधानियां,
0: उसकी अलग तरह की सावधानियां
1: जी। डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट।
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके। माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहां से।
1: जी जी, जी।
0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है, और हमने उसको सपोज -3 दे दिया,
1: जी
0: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है ये बच्चे

0: उसकी अलग तरह की सावधानी है।
1: जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट।
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके। माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से।
1: जी जी, जी।
0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया,
1: तो जी
0: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है। ऐसे नहीं है, जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा आजकल का एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है आंख का नंबर आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है, वो आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया?
1: हाँ बिल्कुल। तो फिर आप तो ये भी सवाल नहीं उठा सकते?
0: नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है। सवाल तो जरूर उठाइए।
1: जी जी,
0: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है? जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
1: ओके, बिल्कुल बिल्कुल,
0: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं।
1: जी।
0: और ये उल्टा साइंस है, जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो,
1: वो क्लियर बनेगी,
0: वो क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: शेप और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स, दोबारा देख लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा, मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर अलग चीज है, नजर अलग चीज है।
1: जी,
0: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नजर पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए, सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो है बेचारे उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है।
1: जी जी,
0: ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है।
1: जी जी जी,
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की, तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल।
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं। इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15-20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है। बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो।
1: बिल्कुल।
0: मैं तो ऑलवेज कह रहा हूं इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, दृष्टि।
1: बिल्कुल।
0: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर दे,
0: और 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है।
1: जी, जी।
0: ग्रोथ, जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है।
1: जी।
0: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आप बच्चे की नजर देखिए।
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, बड़े नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं
1: जी,
0: वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि चश्मा हटाया जा सकता
1: जी,
0: है?
1: जी, तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है
0: जी।
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी,
1: उनके एक मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20 18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गुलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गुलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गुलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो

0: सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है।
1: अच्छा,
0: उसका एक कैलकुलेशन है और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूँ, नाइन स्टैंडर्ड फिजिक्स है, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा, दो साल तक नंबर स्टेडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं, किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
1: तो
0: और लेजर हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आपकी दृष्टि में परिणाम आ सकता है।
1: ओहो,
0: आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो।
1: करेक्ट,
0: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है। एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो, अगर 20 पे आपने करवा लिया तो
1: जी,
0: लेकिन 45-50 तक आपको

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा 5:40 तक हमारा और आपका साथ। करेंगे बातें, सुनेंगे लोकगीत और गजलें भी। दोस्तों आपसे हम पहले बात करते हैं, बात ये कि दुनिया का कोई भी काम, संसार में आप किसी भी काम को देख लें, तो वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अगर नहीं किया जाए तो उसमें सफलता नहीं मिलती है और काम पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है या फिर उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। और आपसे कह दें कि आपको याद होगा एक दोहा, कबीरदास का दोहा है, आपने हमने खूब सुने हैं कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा के की पौन। तो आपको बता दें कि कोई भी चीज़ मेहनत के बिना संभव नहीं है, चाहे वो विद्या हो या आपने किसी भी कार्य में आप लगे हों, वो कोई भी काम हो या फिर शिक्षा प्राप्ति के लिए की जा रही मेहनत, अगर उसमें हम पूरी तरह से अपने आप को आत्मसात न कर लें, उसमें अपने आप को पूरी तरह डाल न दें, ढाल न दें, तो फिर उसमें सफलता की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। जिस तरह से हाथ के हिलाए बिना पंखे से हवा नहीं निकलती है, गांवों के लोग हम लोग हैं और आप जानते हैं कि अगर बिजली नहीं होती है किसी कारणवश तो हमें हाथ के पंखे पे आ जाना पड़ता है। और पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में तो ऐसा ही होता था कि बहुत कम बिजली का मामला था और बहुत कम जगहों पे बिजली पाई जाती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो विद्युतीकरण हुआ ही नहीं था बहुत जगहों पे। ये हम दशकों, कई दशक पहले की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। तो ऐसे में लोगों का जो जीवन गुजरता था गर्मी के दिनों में, वो पंखे के द्वारा ही गुजरता था। तो पंखा जब तक आप चलाते रहते थे,

हाथ से हिलाते रहते थे, तब तक आपको, यानी जो लोग उस समय थे उनको हवा मिलती थी और पंखा चलाना बंद, हवा मिलनी बंद। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम अवश्य ही करने होंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो इस बात को हम लोगों को याद रखना चाहिए। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देवी गीत से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे वीरेंद्र कुमार मिश्रा के स्वर में ये देवी गीत। लोक गीत अभी आप और भी सुनेंगे।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: स्नेहा झा के स्वर में सुनिए अब ये लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा के स्वर में विज्ञापन से पहले लोकगीत नजरिया हमरी ओर रखिया। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों बढ़ते हैं गजल की ओर।

आप सुन रहे थे क्रमशः अलका याज्ञिक और हरी हरण एवं गुलाम अली को। पहली गज़ल जो थी उसे गाया था अलका याज्ञिक और हरी हरण ने, और अब जो गज़ल आप सुन रहे थे अभी वो थी गुलाम अली की गाई हुई। ये गज़ल हम आप तक पहुंचा रहे हैं चंदन दास के स्वर में।

चंदन दास को आप सुन रहे थे अभी। इसके साथ ही तरुण कुसुम कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। दोस्तों, अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: तरुण कुसुम युवा दोस्त सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं नई फिल्मों के गाने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: तो फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं, ये पहला गाना फिल्म है ड्रीम गर्ल 2 का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे थे अभी मीत ब्रोस मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया की आवाज़ में फिल्म सत्य प्रेम की कथा का हम गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप जो सुन रहे थे वो मीत ब्रोस, फिएट और जोनिता गांधी एवं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में गाना था, जी हाँ, जिसे आपने अभी सुना। फिल्म थी ड्रीम गर्ल 2। तो आइए सुनिए फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ये गाना, मीत ब्रोस मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया का गाया हुआ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे सत्य प्रेम की कथा का ये गाना, मीत ब्रोज, मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया का गाया हुआ।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और

0: स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और अब सुनिए दीपाक्षी खलीता एवं अल्तमश फरीदी का गाया हुआ ये गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म घूमर से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे गाना फिल्म घूमर का। इस गाने को गाया था दीपाक्षी खलीता और अल्तमश फरीदी ने।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। 6 बजने को हैं, कुछ एक क्षणों में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए

0: तीन सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेरल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनिएगा विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। 6:25 पर सुनते हैं मैथिली संवाद। 6:30 गांव घर कार्यक्रम के तहत आज होगा अनुभव के चश्मा सा, जिसमें चर्चा होगी बुजुर्गों के अनुभव से उठाएं लाभ। और इसके अलावा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे बुनियाद। बुनियाद कार्यक्रम का समय होगा 6:45। 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में चर्चा होगी बरसाती कद्दू की आधुनिक खेती। इसके अलावा मौसम संबंधी जानकारी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी बातें होंगी। 7:52 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:00 संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर सुनिएगा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और रात 10 बजे सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दरभंगा है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्रमशः गौतम मिश्र, काशीनाथ झा किरण और सूर्यनारायण पोद्दार के गाए विद्यापति गीत। पहले सुनिए गौतम मिश्र का गाया ये गीत।

क्रमशः दो विद्यापति गीत आपने सुने। पहला गीत था गौतम मिश्र का गाया हुआ और ये दूसरा जो आप सुन रहे थे इसे गाया था काशीनाथ झा किरण ने। अब जो विद्यापति गीत आप सुनेंगे उसे गाया है सूर्यनारायण पोद्दार ने।

आप सुन रहे थे सूर्य नारायण पोद्दार के स्वर में ये विद्यापति गीत चलो देखे जाओ। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुने क्रमशः गौतम मिश्र, काशीनाथ झा किरण और सूर्य नारायण पोद्दार को। अब विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। कुछ क्षणों में मैथिली संवाद प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामाक मध्य आई लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत कैल गेल। कार्मिक लोक शिकायत आ पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ई विधेयक सदन में प्रस्तुत कैलनि। ई विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधनक प्रावधान करैत अछि। विधेयक प्रस्तुत कैल जयबाक दरमियान विपक्षी सदस्य सब नीट के मुद्दा पर छात्र सभक विरोध प्रदर्शनक दरमियान भेल कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चाक मांग करैत हंगामा कयलनि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहलनि जे परीक्षा सुधारक दिशा में ई विधेयक पहिल आ महत्वपूर्ण डेग अछि आ एहि पर व्यापक चर्चा होयबाक चाही। एम्हर राज्यसभा में सेहो छात्र सभक विरोध प्रदर्शन के दरमियान भेल कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दा के लऽ कऽ विपक्षी सदस्य सब हंगामा कयलनि। सर्वोच्च न्यायालय परीक्षा पेपर लीक मामला के लऽ कऽ छात्र सभक प्रदर्शनक दरमियान पुलिस बलक अत्यधिक प्रयोगक आरोप सँ संबंधित कतेको याचिका पर काल्हि सुनवाई करत। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आ न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची आ वी मोहनाक पीठ विरोध प्रदर्शनक दरमियान घायल पुलिसकर्मी सभक परिजन के याचिका पर सेहो सुनवाई करबाक निर्णय लेने अछि। एहि मध्य मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कहलनि जे शांतिपूर्ण आ वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार अछि। केंद्र सरकारक दिस सँ महाधिवक्ता तुषार मेहता जनौलनि जे अदालत के कार्रवाई में ओ सहयोग करताह। जदयूक कार्यकारी अध्यक्ष आ सांसद संजय झा कहलनि जे उच्च स्तरीय टास्क फोर्सक गठन सँ परीक्षा प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप आ गड़बड़ीक संभावना घटत। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार सँ गपशप करैत श्री झा जनौलनि जे टास्क फोर्स पेपर लीक रहित आ पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करबा में प्रभावी भूमिका निमाहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे राज्य में डेयरी क्षेत्रक विकास कयल जायत। नालंदाक बिहार शरीफ में विकास योजना सभक शुभारंभ करैत श्री चौधरी कहलनि जे राज्य में उत्पादित डेयरी उत्पाद सबके देश आ दुनियाक बाजार धरि पहुंचेबाक लेल विस्तृत योजना बनाओल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री कहलनि जे राज्यक प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री पशु जन औषधि केंद्र स्थापित कयल जायत। एहि सँ किसान सब के बीमार पशु सब के लऽ कऽ समस्या कम हैत। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लऽ कऽ सब दल प्रचार में अपन पूरा ताकत लगा देलक अछि। काल्हि सांझ प्रचार प्रसार थमि जायत। एहि सँ पहिने आई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में रोड शो कऽ रहल छथि। रोड शो में भाजपा सहित एनडीएक कतेको वरिष्ठ नेता सम्मिलित छथि। एम्हर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सेहो पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में आई रोड शो कयलनि। जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्रक कतेको मोहल्ला में लगातार जनसंपर्क आ सभा कऽ रहल छथि। राज्यक विभिन्न भाग में दक्षिण पश्चिम मॉनसूनक सक्रियता एक बेर फेर बढ़ गेल अछि। मौसम विभाग अगला 24 घंटाक दरमियान गोपालगंज सिवान कटिहार किशन

0: गंज पूर्णिया सहित राज्यक उत्तर पश्चिम आ उत्तर पूर्व भाग मे कतेको ठाम भारी वर्षाक चेतावनी जारी कयलक अछि। एम्हर पछिला 24 घंटाक दरमियान बसुआ मे सबसँ बेसी 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल। मौसम विभाग अगिला 1 सँ 2 घंटाक दरमियान अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, खगड़िया, मुंगेर, पटना, सहरसा आ समस्तीपुर सहित राज्यक 14 जिला सभ मे तेज हवाक संग वर्षाक अलर्ट जारी कयलक अछि। एहि दरमियान किछु ठाम वज्रपातक सेहो आशंका अछि। सुपौल जिलाक सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरो मे पुलिस छापामारी कऽ मादक पदार्थ स्मैकक तस्करी मे सम्मिलित 5 आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि। दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर जनौलनि जे जिला सँ भऽ कऽ जायवला राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर 12 करोड़क लागति सँ 6 फुट ओवरब्रिजक निर्माण कयल जायत। निर्माण कार्य शीघ्रहि आरंभ होयत। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर।

0: गोर लगै छी उगना भाई।
1: खूब प्रसन्न रहू मोनी बहिन। आइ सोम दिन अछि आ आजुक दिन हमरा लोकनि स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल लऽ कऽ अबै छियनि हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा।
0: अनुभव, सबसे पहले तो अनुभवक जे चश्मा अछि ओहिमे सब श्रोता लोकनि के स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि। आ ई शब्द जे अछि अपने आपे में अथाह एतेक नमहर अछि जे बुझाइत अछि कि एकदम अथाह भऽ जाइत अछि।
1: ठीके कहलहुँ। आ आइ एहि अन्तर्गत हमरा लोकनि एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सुनब बुनियाद, एकर सङ्गहि गीतनादक आनन्द लेब, एकटा भेंट वार्ता सुनब, मुदा एहि सबसँ पहिने किछु दू टप्पी कऽ लै छी। मुनि बहिन, हमरा लोकनिके बुजुर्ग लोकनिके अनुभवसँ लाभ उठेबाक चाही। कारण जखन कखनो समाजमे परिवारमे विशेष परिस्थिति उत्पन्न होइत अछि, कोनो समस्या उत्पन्न होइत अछि, तऽ ओहन बेरमे इएह लोकनि हमरा लोकनिके दिशा देखबैत छथि, बुझबैत छथि, अथवा कोनो प्रकारक जो अपना सबके कतौ जयबाक आयबाक रहैत अछि तऽ कतौ जाउ कतौ नहि जाउ, की नीक अछि की बेजाय अछि, सब किछु ई सब अपन अनुभवसँ हमरा लोकनिके बतबैत छथि,
0: एकदम आगाह करै छथिन जे बूढ़ बुजुर्ग छथिन अपन सबके घरक अपन गामक समाजक। उगना भाई, सबसे तो अखुनका जे समय अछि जे लोक सब छथि ओ बुधियार छथिन, तर्क से सोच कर चलै छथिन, विचारित छथि, जीवन में तकनीक जे अछि ओकर महत्व बेसी ओ सब दैत छथि, तखनो जीवन जीवय में कठिनाई के सामना करय पड़ै छै जो बूढ़ बुजुर्गक अनुभव नहीं भेटैत अछि तखन।
1: तैं हमरा लोकनि के बुजुर्गक अनुभव से लाभ उठेबाक चाही। आ आब हमरा लोकनि सुनै छी ई गीत, तो सुनल जाए।

0: एखन हमरा लोकनि चंद्रिका कुमारीक गाओल ई कजरी सुनलहुँ, बड़ नीक लागल।
1: आब अपना सब श्रोता लोकनि के किएक ने एकटा भेंट वार्ता सुना दिन। विषय अछि बुजुर्गों के लिए योग का महत्व। डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से भेंट कर रहल छथिन शंकर कुमार चौधरी।
0: तो सुनल जाए दोनों गोटा के बीच भेल ई गपशप।
2: आई हम मोहल्ला मदारपुर दरभंगा में आयल छी। एतय

0: एकटा योग्य अनुभवी वृद्ध चिकित्सक छथि, हिनक नाम भेलनि डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। हिनकासँ हमरा लोकनि स्नेही वृद्ध श्रोता लोकनिक लेल बुजुर्गावस्थामे कोन तरहक योग प्राणायाम एकर संग संग आसन एहि सब पर ध्यान देबाक चाही जाहिसँ कि स्वस्थ रहब, तऽ डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी अहाँ वृद्ध लोकनिके ई जनतब दियौन जे कोना स्वस्थ रहबाक लेल एहि सबके जीवनमे आवश्यकता अछि तऽ अपने जनतब देल जाउ।
1: विषय तऽ बहुत गूढ़ अछि, बहुत ज़्यादा बाजक एहिमे जरूरत पड़तै, लेकिन तैयो हम शॉर्टमे अहाँके एहि विषयपर बतबै छी। जे लोग 60 ऊपर चलि गेला, जिनकर उम्र भऽ गेलनि 60 से ऊपर, हुनका सबसे पहिले

0: ओकर संग संग आसन एहि सब पर ध्यान देबाक चाही, जाहिसँ कि स्वस्थ रहब। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, अहाँ वृद्ध लोकन के ई जनतब दियौन जे कोना स्वस्थ रहबाक लेल एहि सबके जीवन में आवश्यकता अछि, तो अपने जनतब देल जाओ।
1: विषय तो बहुत गूढ़ है, बहुत ज़्यादा बाजा के में जरूरत पड़ते, लेकिन तैयो हम शॉर्ट में अहाँ के एहि विषय पर बतबै छी। जे लोग 60 ऊपर चल गला, जिनकर उम्र भ गेल 60 से ऊपर, हुनका सबसे पहले 6 बजे साँझ के बाद हुनका आहार ग्रहण नहीं करक चाहिए। केवल गर्म पानी पी सकै छथि, सुषुम पानी पी सकै छथि, अन्न ग्रहण नहीं करता। दोसर, ओकर बाद 6 बजे के बाद भोजन नहीं करथिन, और ओकर बाद केवल रात में पानी पी कर सुतथिन। 4 बजे भोर के बाद बिछावन पर नहीं रहबाक चाहिए हुनका। ई करता नित्य क्रिया से निवृत्त भक निश्चित रूप से बूढ़ा के लिए तारासन, योग में तारासन सबसे उपयुक्त है। शरीर के संतुलन बनल रहतन, शरीर सीधा रहतन, पैरों के पैर के मांसपेशियों से हो मजबूत रहतन। ओकर बाद जो दोसर है वृक्षासन, वृक्षासन करूँ, अहाँ के माइंड के संतुलन बनल रहत, शरीर के संतुलन बनल रहत। ओकर बाद तेसर है वज्रासन, जे 5 मिनट से लकर 10 मिनट तक वज्रासन पर बैठू। वज्रासन केना कैल जाए छे नेट पर अखनी कतौ देख सकै छी अहाँ वज्रासन, ओहि पर विशेष हम नहीं चाहे छी। ओकर बाद भुजंगासन, सर्पासन भी से हो कहल जाए छे, भुजंगासन कहल जाए छे, भुजंगासन करूँ, जैसे शरीर में स्ट्रेच आयत। पवन मुक्तासन, शशकासन, सवासन, सवासन भले मैंने सब जहन आकार भ के सब जैसा सो जाना है, सब जैसन मतलब मुर्दा जैसन। सवासन के मतलब भले जे मुर्दा जैसन अहाँ सुति जाओ, आप एकदम शरीर के स्थिर कर लिया सवासन। प्राणायाम में जे छे से बुजुर्ग के अनुलोम विलोम करूँ, ब्राह्मरी प्राणायाम करूँ, दीर्घ श्वास लंबा ओंकार लंबा श्वास लिया आ ओम ओम करे तो करा अंत करूँ, लंबा सांस लिया और लंबा ओकरा छोड़ू। या भेल जे अहाँ के मुख्य रूप से जे अहाँ जे छै से प्राणायाम अनुलोम विलोम करू, माइंड शांत हुए। अहाँ के यदि उच्च रक्तचाप है, शुगर है, सब सब कंट्रोल हो जाए, लेकिन 6 बजे शाम के बाद भोजन नहीं करना है और रात में पानी पी कर के सोना है। जो खाना है दिन में ही खाना है, और चूल्हा पर चढ़ा हुआ अनाज 24 घंटा में एक ही बार खाना है। शाम में यदि खाना है, दिन में यदि आपने खा लिया तो शाम में 6 बजे खाना है, फल खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, चिनिया बादाम का ओंकड़ा खाइए, मूंग का ओंकड़ा खाइए, चना का ओंकड़ा खाइए, बहुत से बहुत 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, उससे ज़्यादा।
0: यानी मात्रा पर आहार के सेहो ध्यान देना।
1: हाँ, एकदम एकदम, ये नहीं जब अंकुरित अनाज कहलूँ तो सीधे अहाँ आधा किलो लो लेबे खा लेबे, नहीं, 20 से 25 ग्राम आ खूब चबा कर। खानाई के बारे में कहल गेल अंग्रेजी में, ईट यू सॉलिड एज लिक्विड आ ईट यू लिक्विड एज सॉलिड। कह के माने ही, जब अहाँ ठोस आहार खाई छी तो ओकरा एते चबैयो मुँह में जो पानी भ जाए तब निगलू, आ जब अहाँ लिक्विड खाई छी, लिक्विड ईट यू लिक्विड, जहाँ जब अहाँ दूध पिए छी, लस्सी पिए छी, पानी पिए छी, तो ठोस के तरह ओकरा मुँह में चलैयो, तखने ऊ पचत। एक लोटा दूध पी लेलों तो ऊ हासिल नहीं है, सीधे एनस से निकल जात, ऊ हासिल नहीं जब तक ओकरा में लार शामिल नहीं है। और कुछ बाजा चाहे
0: इहो बड़ नीक अहाँ कहलिए जे हमरा लोकन आहार जे लै छी ओकर लेबाक ढंग की हेबाक चाही।
1: अगर ढंग नहीं जनै छै,
0: प्रायः लोग एहन अछि देखबा में अबैत अछि जे वृद्धावस्था में एहि पर ध्यान नहीं दऽ पबै छथिन, लेलौ खा लेलौ बुझलिए हम आहार लऽ लेब, तऽ इहो नहीं हेबाक
1: चाही। एकदम नहीं, अगर अहाँ आहार लेलिए, आ जैसे कि सबसे अखनी समस्या समाज में छे कंस्टिपेशन, कब्ज।

0: कब्ज का मतलब है कि अनपचा नहीं, अनपच उसका मेन कारण है। आपने जो ग्रहण किया वो पचा नहीं, तो आंत उसको पकड़ लेता है, इसमें माल है, इसको जाने नहीं
1: दे। गैस से हो,
0: हाँ हाँ, जब माल सरेगा तो गैस बनेगा। गैस का कोई फैक्ट्री नहीं, जब मल अंदर में सरा लागत तो गैस गोबर के रख दियो, झाँप दियो, देखियो सरते गैस बने से। वही तरह अहाँ के अंदर में जो पैखाना है वो अगर सरते तो गैस बनते।
1: कहवा का अर्थ जो खून, पैखाना और पेशाब जो तीनों ठीक है बुझू जो स्वस्थ,
0: यही उसका मतलब कि मेन अथी है, मेन कुंजी है।
1: ठीक है, कह लो
0: आहार लेना है
1: कुमार श्रीवास्तव जी, हाँ ठीक है कह लो। जे वृद्धावस्था में हमरा लोकन के योग के अपने बात चाहिए
0: निश्चित,
1: आ स्वस्थ रहवाक ई एकटा कुंजी है।
0: हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इहो एगो कुंजी है। कोनो हालत में ब्रह्म मुहूर्त में बिछावन पर जे लेटल रह तो स्वस्थो छी तो अस्वस्थ भ जाए, आ अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर अहाँ बीमारो छी बैठ जाओ तो बीमारी अहाँ के भागल।
1: अपने स्नेही श्रोता लोकन के बड़ निक जनतब दलियन, अय लेल अपने के धन्यवाद।
0: ठीक छै, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो खूब सुंदर लागल, खूब निक लागल ई भेंटवार्ता अखन अपना सब बुजुर्गों के लिए योग के जो महत्व अहि पर सुनलो डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से शंकर कुमार चौधरी के बातचीत।
3: आप सुनै छी हमरा लोकन प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, तो सुनल जा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हाँ, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ आसानी से, प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। इस कार्यक्रम में लगातार हम आप सबों को कोर्सेज के बारे में बताते हैं, ज्यादातर बुलाते हैं अपने विशेषज्ञों को, जानकारियां दिलवाते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में अवनीश रंजन थे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में जानकारियां दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया दोनों

0: में अंतर करके कि प्लेन बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन में क्या क्या हाँ अंतर है, कहाँ कौन आगे और कहाँ कौन थोड़ा पीछे है, ढेर सारी जानकारियां हम आपको दिलवाते हैं। जैसे जैसे इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन लोगों ने हाँ पढ़ाई की है उनके लिए 3 नए कोर्सेज आए थे जिसकी भी चर्चा हमने आपसे की थी। पहला था बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा था फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और तीसरा था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में आप पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद हाँ रोजगार मिलना, हाँ सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पढ़ने के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, यूनिवर्सिटी ने या जहां से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसने क्या व्यवस्था की है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी इसकी क्या व्यवस्था है, हमने जांच पड़ताल की आपके लिए और हमने पाया कि बजाबता एक पूरा यूनिट है आपके प्लेसमेंट को लेकर जो आपको तैयारी करवाता है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जाए, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे जॉब असिस्टेंस दिया जाए, ये सारी चीजें और उस विभाग को जो देखते हैं ना जो इंचार्ज है आज हमारे साथ है। चलिए आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय।
1: हम अरिंदम मुखर्जी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड इंचार्ज फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी।
0: अरिंदम जी बुनियाद कार्यक्रम में आ गए हैं और करोड़ों युवा साथियों और उनके माता पिता से जुड़ गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हाँ क्या क्या कुछ होता है बुनियाद कार्यक्रम में हम जानकारियां देते हैं। आप हमें ये बताइए कि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग हाँ जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी छात्र के लिए और प्लेसमेंट के लिए।
1: देखिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि स्टूडेंट लोग हायर एडुकेशन में आता है फॉर गेटिंग फॉर एक करियर बनाने के लिए, और ये करियर बनाने के लिए गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोगों को डेवलप करने के लिए हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है ये इंडस्ट्री रेडी है और इंडस्ट्री रेलिवेंट है, और हम लोग स्पेशली स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है टू गेट अ जॉब। हाँ ये जो कंपनी यहाँ पे आता है ये कंपनी जैसा डोमेन नॉलेज में स्टूडेंट लोग का इवेलुएट करता है और ये देखता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो सिचुएशन हैंडल कर पाता है क्या नहीं, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टूडेंट को डालता है। ये स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग पहले साल से ही स्टूडेंट लोग को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब उसका प्लेसमेंट सीजन आएगा वो कंपनी में बैठ के सक्सेसफुल होके हाथ में जॉब लेके उसका कोर्स खत्म करेगा। और हम लोग दूसरा चीज जो है हम लोग प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता है 6 महीना और 8 महीना पहले, कोर्स का खत्म होने का 6 और 8 महीना का पहले।
0: इसके लिए आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या होता है, कौन लोग होते हैं, ये सारा कुछ बताइए जरा हमारे बिहार और झारखंड के सुनने वालों को।
1: हम लोग का यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनर है जो जिसका रेगुलर बेसिस में क्लास मिलता है वो क्लास में जाता है और स्टूडेंट लोगों को रेडी करता है प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए। दूसरा चीज जो है ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हायर करता है आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और रेगुलर बेसिस में और एवरी मंथ वो कैंपस में आता है और हर डिपार्टमेंट को लेके वो बैठता है ट्रेनिंग देने के लिए। उसमें उसका पर्सनल इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग होता है, एक्सटेम्पो ट्रेनिंग होता है, रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है, रीजनिंग का ट्रेनिंग।

0: होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज का ट्रेनिंग होता है। हाँ, ये सब ट्रेनिंग हम लोग पहले से स्टार्ट कर देता है और ये आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के साथ एडिशनल ट्रेनिंग हम लोग देता है कि जब स्टूडेंट लोग प्लेसमेंट सीजन आएगा, स्टूडेंट लोग रेडी रहेगा और ये आपका उसका हाथ में एक नौकरी लग जाएगा।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ हैं अरिंदम मुखर्जी जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग विभाग के हेड हैं। इन्हीं की देखरेख में बच्चों को ट्रेन किया जाता है जब कंपनीज आती है पढ़ाई के बाद, और जब नौकरी की बारी आती है तो एकदम पुख्ता ट्रेनिंग देके बच्चों को इंटरव्यू देने लायक बनाया जाता है, नौकरी पाने लायक बनाया जाता है। और नौकरी बहुत बड़ी बात है, पढ़ने के बाद तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। बहरहाल ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से जो कि सासाराम रोहतास जमुआर में है, और एक टोल फ्री नंबर हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए 1800 121 0051 1800 121 0051, और एक मोबाइल नंबर है जो सिर्फ आप युवाओं के लिए ही लिया गया है कि आप इस पर जानकारियां ले सकें, और वो नंबर है 9431899002 9431899002, ये नंबर है, इस पर आप अधिक से अधिक जानकारियां ले सकते हैं। और राजेश फिर कहता है आप लोगों से, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए। और अब तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे की भी कोई समस्या नहीं रही। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और 13-14 ऑप्शन है टेक्निकल पढ़ाई का, यहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल मुखर्जी साहब एक बात बताइए, कहते हैं कि जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी, हाँ जो हिंदी में बोलता है, हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता है, उसके लिए थोड़ा रिसोर्सेज कम है, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है अभी बताइए।
0: देखिए हमारा का हिंदी है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, हाँ आपका पूरा भारत में इसका एक्सेप्टेबिलिटी है और इसका भी बहुत सारा डिमांड है। आप कोई भी आपका जो डेवलप्ड सिटी है, टाउन में है, सब जगह में जहाँ जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है, ऑफिस है वर्क लोकेशन में, वहाँ पे हिंदी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज और एक्सेप्टेबल है। और क्या है कि आप हिंदी इंग्लिश मिलके भी आप कोई भी चीज एक्सप्रेस कर पाता है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और हिंदी जो भी है आपको अच्छा तरीके से एक्सप्रेस करने पड़ेगा, हिंदी में हो और अंग्रेजी में हो, वो आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने पड़ेगा, वो चीज सही होने से आपको जॉब मिल जाएगा।
1: हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपने सचमुच बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बात बताइए, क्या 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए आप गारंटी देते हैं, असिस्टेंस देते हैं? क्योंकि चीजें साफ साफ होनी चाहिए, एकदम खुल के, कोई छिपा के, लाग लपेट के साथ नहीं। बताइए क्या है मुखर्जी जी आपके यहाँ GNSU में?
0: आपको देखिए इंडिया में और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 100% जॉब गारंटी नहीं देता है। ये आपका प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, हम लोग का काम है स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट को रेडी करना, उसको नॉलेज देना। लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज है, हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है और हम लोग का बिलीफ है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा।
1: वाह बहुत खूब, आपने जो बातें थी आपने सच सच बता दी कि 100% हम असिस्टेंस देते हैं, गारंटी की बात नहीं है। चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा, कोई सजेशन देना चाहिएगा स्टूडेंट्स को, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं।
0: हमारा तो एक ही सजेशन है, एडवाइस है, जो भी बोलिए, स्टूडेंट लोग को बोलिए कि आपका टेक्निकल ट्रेनिंग और नॉलेज और स्किल उसको एक्वायर करना बोलिए, नहीं तो उसको तुरंत जॉब नहीं मिलेगा। उसको स्किल नहीं मिले, नहीं है टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उसका, उसके लिए वो आपका क्या है कि ऑब्सोलेट हो जाएगा इंडस्ट्री में। और इसीलिए एक टेक्निकल नॉलेज का बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत सही कहा अरिंदम मुखर्जी साहब आपने स्टूडेंट से कि टेक्निक

0: फिजिकल होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और राजेश भी कहता है कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए टेक्निकल में आ जाइए और नौकरी मिल जाएगी, इसकी आप आशा कर सकते हैं अगर जो आपने अच्छे से पढ़ाई की। मुखर्जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरत होगा तो हम फिर आपको बुलाएंगे बुनियाद कार्यक्रम में। पूरा बिहार और झारखंड आज जो आपसे बात हुई ये सुनकर लाभ उठाएगा युवा साथी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों चलने का वक्त धीरे धीरे करीब आता चला जा रहा है, पैसा नहीं है क्या हुआ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वैसे कोर्स को चुनिए जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। टेक्निकल पढ़ाई करनी है बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में 13-14 टेक्निकल पढ़ाई, मेडिकल से शुरू करके पैरामेडिकल से एग्रीकल्चर बहुत सारे हैं, आप पता कर लीजिए इन नंबरों पर 9431899002 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800120051, इस नंबर पर पता कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने ये बुनियाद कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। चलते हैं अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: श्रोता लोकन अखन अपना सब सुन रहा छो प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आ अनुभवक चश्मा आप समेटवाक बेर से हो भ गेल अछि। तो कार्यक्रम आई समेट कर अपना सब खेती गृहस्थी में किसान भाई के सबसे पहले स्वागत करै छी।
3: हमहु स्वागत करै छियनि असने ही किसान श्रोता भाई बहिन लोकन के लेल आइ लोग को आयल छियनि किछ लोकगीत एकर संग गपशप सेहो करब, मौसम संबंधी जे जनतब ओ देवन, समसामयिक जे कृषि कार्य ताहि प्रसंग में चर्चा करब, मुदा अइ सबसे पहिने जे सामयिक जे हमरा लोकनि काज करब कृषि संबंधी ओहि पर किछु गप कर लै छी जे एखन लत्ती वाला जे तरकारी तकर जो हमरा लोकनि बरसाती जे ओकर प्रभेद ओकरा जो लगबै छी तऽ बेसी लाभ हैत। तऽ
2: आब खेती में तो किसान भाई सब आब आधुनिक खेती अपना रहल छथिन, अपने नाय बड़ आवश्यक है, देखिए रहल छी कते खेत में अखन धान धन रोपनी किसान भाई के लेत मुदा सुखा रहल है, पानि जखने नहीं बरसत समस्या जे मौसम के अछि ओहि से बचवा के लेल किसान भाई अपन जे छे आधुनिक तरीका से खेती करै छथिन। तो अखन जे अहाँ कहलहुँ लत्ती वाला तरकारी जिनमें सजमनि भऽ गेल एकर जे आधुनिक खेती करै के अछि तऽ उन्नत प्रभेद किसान भाई लगेता जेना पूसा नवीन, पूसा संगीता, काशी गौरव, कोयम्बटूर लौकी एक, अर्का बहार, ई सब जे अछि प्रभेद अछि जे किसान भाई लगा सकै छथिन। आ सजमनि के खेती के लेल गर्म आ नमी वाला जे जलवायु अछि से सबसे नीक होइत अछि, 25 डिग्री सेल्सियस से लऽ कऽ 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जे छै एहि तरह के तरकारी के बिया के अंकुरण के लेल खूब नीक होइत अछि,
3: अनुकूल होइत अछि बेर।
2: आ माटिक जे पीएच मान अछि से 6 से 7.5 के बीच हेबाक चाही।
3: तऽ माटिक पीएच मान के जे हमरा लोकनि के ज्ञात होइत अछि ओ माटि के जांचक पश्चात एकर संग कते खाद उर्वरकक व्यवहार करबाक चाही तऽ ई सब किछु माटि जाँचक बाद हमरा लोकनि के ज्ञान होइत अछि। तब माटिक जाँच करा कऽ तखन सजमनि के खेती करबाक चाही जे बेसी लाभदायक है,
2: नीक से उत्पादन हेतै इस तरीका से। आ खेत में गोबरक खाद जे छै से 15 से 20 टन खाद प्रति एकड़ पर्याप्त होइत अछि, आ नीक पानिक निकास के व्यवस्था अवश्य राखी। उर्वरक तऽ कहबे के लिए उगना भाई जी की माटिक जांच के बाद कराबी, ओना जे संतुलित अछि उर्वरक जे में नाइट्रोजन, फास्फोरस आ पोटास एकर संतुलित मात्रा में किसान भाई व्यवहार कऽ सकैत छी। जैविक खेती के लेल नीमक खल्ली, कंपोस्ट आ हरियर खादक प्रयोग किसान भाई व्यवहार कऽ सकैत छी।
3: ठीके कहलो, तो अइ गप पर हमरा लोकन के ध्यान देबाक चाही तखन

0: से ई सजमैन के खेती निक जका हैत। आ मुनि इहो ध्यान दी जे सजमैन के जे लत्ती होइत अछि तऽ एकरा हमरा लोकनि के कीड़ा मकोड़ा सब बचेबाक चाही, ताहि के लेल जे रोग नियंत्रण संबंधी जे उपाय ओ करबाक चाही। सजमैन के बिया के जहन दैत छी नर्सरी में, कारण तकर बाद जहन गाछ पैघ होइत अछि कनिक निकलैत अछि तखन ओकरा थल्ला काटि कऽ खेत में रोपैत छी। तऽ एहन परिस्थिति में बिया के उपचारित कऽ कऽ खेत में देबाक चाही, कारण बीजो उपचार सँ बिया में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास होइत अछि। तऽ एहि सब गप पर जो ध्यान देब तो सजमैन के खेती निक जका हमरा लोकन कऽ सकब।
1: एकदम एकदम अपन किसान भाई एकर ध्यान अवश्य दै छथिन। आ जे बरसाती सजमैन के गप केलहुँ जे एहि मास में किसान भाई एकरा लगा सकैत छथिन, एकरा लेल 1.5 किलोग्राम बिया के मात्रा जे छै से प्रति हेक्टेयर आवश्यक अछि। बिया के बीजोपचार करै के संगे 2 से 3 घंटा तक पानि में भिजा कऽ तकर बाद बाउ करबाक चाही, जैसे कि अंकुरण नीक सँ होइत अछि। किसान भाई गपशप और करब, जानकारी और देव, मुदा ओहिसँ पहिले चलै छी अपना सब गीतनाद दिस आ सुनाबैत छी किसान भाई के ई गीत।
0: तऽ सुनल जाउ।

0: तऽ श्याम मोहन मिश्रक गाओल ई बहुत नीक गीत अपना सब सुनलहुँ, किसान भाई सबके खूब नीक लागल हेतनि। उगना भाई अपना सब किसान भाई के जानकारी दै छलियनि जे कि बरसाती सजमनि के कोन तरीका से किसान भाई आधुनिक ढंग से खेती कऽ कऽ लाभ कमा सकैत छथि।
1: आ आब मोनि बहिन हमरा लोकनि स्नेह किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि के मौसम संबंधी जे पूर्वानुमान ओकर जनतब दऽ दैत छियनि। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग सँ देल गेल आगामी 29 जुलाई धरिक मौसम पूर्वानुमान ई अछि जे एहि अवधि के बीच उत्तर बिहार में कतेको ठाम पर बरखा गरज के संग भऽ सकैत अछि। बिजली चमकबाक ओ तेज गति सँ हवा चलबाक सेहो संभावना अछि। मधुबनी सीतामढ़ी एकर संगे अन्यान्य जिला सब मे किछु ठाम पर घनगर मेघ लागल रहि सकैत अछि, ओ मध्यम सँ भारी बरखा भऽ सकैत अछि। पूर्वानुमानित अवधि के बीच उत्तर बिहारक कतेको जिला मे नीक बरखा सेहो होयबाक संभावना नहि अछि, कतौ कतौ हल्लुक बरखा सेहो भऽ सकैत अछि। एहि बीच बेसी सँ बेसी तापमान 30-34 डिग्री सेल्सियस के बीच ओ कम सँ कम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि। भिनसर के बेर में सापेक्ष आर्द्रता 80-90% धरि, ओ दुपहरिया में 50-55% के बीच रहबाक संभावना अछि। पूर्वानुमानित अवधि के बीच हवा मुख्य रूप सँ पूर्वा चलबाक संभावना अछि, जे 515 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ चलि सकैत अछि। तऽ ई छल स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनिक लेल मौसम संबंधी पूर्वानुमानक जनतब।
0: एहि मौसम के हिसाब से अपन किसान भाई सब अपन काज कऽ सकैत छथिन। आ एकरा संगे किसान भाई के जे समसामयिक जानकारी अछि ओहो देब।
1: ठीके कहलहुँ, तऽ ओ की अछि ओ दियौन।
0: तिल जे अछि ई ऊंच वला जे जमीन हुए ओतय किसान भाई तिल के बाग अखन कऽ सकैत छथि। जँ उपलब्ध माटि मे नमी के लाभ उठाबे के लेल बाउगक काज एहि सप्ताह के अंत तक पूरा किसान भाई कऽ लेथिन। कृष्णा, कालिका, कांके सफेद आ प्रगति MT

0: पचहत्तर जे प्रभेद अछि एकर किसान भाई चयन करैत बीया के जे छै से थायरम 2% थायरम सँ किसान भाई 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीया के दर से उपचारित कऽ कऽ बाउग करथिन आ प्रति हेक्टेयर जे छै से 60 क्विंटल गोबर के खाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 20 किलोग्राम फास्फोरस आ 20 किलोग्राम पोटास के व्यवहार कऽ सकैत छथि आ शेष जे बचल अछि ओकरा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बाउगक लगभग 30 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में कऽ देथिन।
1: मोट अन्न जेकरा मिलेट्स कहै छी अंग्रेजी में तकरा अपर्याप्त बरखाक परिस्थिति में नीक पानि निकास वाला ऊंच भूमि पर वैकल्पिक फसल के रूप में हमरा लोकन ओकर बीया बाउग कऽ सकै छी जाहि में मरुआ जकरा रागी कहै छी ओ कौनी के सेहो खेती कऽ सकै छी। मरुआ के उन्नत प्रभेद अछि राजेंद्र मरुआ RU5 आ RU3। ओ कौनी को उन्नत प्रभेद अछि राजेंद्र कौनी 1 तो एकर खेती कऽ सकै छी।
0: आ किसान भाई एकरा संगे सूरजमुखी के खेती सेहो अखन कऽ सकैत छथिन। 49 जमीन में KBSH1 KBSH44 KBSH53 संगे DRSH1 एहन जे संकर किस्म अछि एकर बाउग किसान भाई कऽ सकैत छी। बीया के थायराम या कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीया के दर से उपचारित कऽ कऽ तखन जे सही दूरी छै ओतय बाउग करथिन किसान भाई आ प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल गोबरक खाद के संगे 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 90 किलोग्राम फास्फोरस 40 किलोग्राम पोटास के संगे 30-40 किलोग्राम गंधक के व्यवहार सेहो करैत तखन सूरजमुखी के नीक उत्पादन प्राप्त हेतनि।
1: तरकारी में परोर के हमरा लोकन एखन बाउग कऽ सकै छी परोर के गुथी लगा सकै छी। एकर उन्नत प्रभेद अछि राजेंद्र परोर 1 राजेंद्र परोर 2 राजेंद्र परोर 3 स्वर्ण रेखा स्वर्ण अलौकिक आ स्वर्ण सुरुचि ये सब एकर उन्नत प्रभेद अछि परोर के। खेत में 150 × 100 सेंटीमीटर के दूरी एकरा लगेबा काल रखबाक चाही आ खेतक तैयारी के बेर में प्रति हेक्टेयर 20-25 टन सरल गोबरक खाद आ 60 किलोग्राम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम फास्फोरस ओ 40 किलोग्राम पोटासक व्यवहार कऽ सकै छी।
0: आ अखन जे बाजार में आब तक लक्ष्याल अछि आब आम के जे कि आब समाप्ति दिस जा रहल अछि ततबे बेसी सुअदगर लागैत अछि आम।
1: ठीक है कहलो
0: तो ई आम लीची के जे समय होइत अछि तो किसान भाई वर्षा के जे पानि अछि ओ खद्धा के माटि नीक से बैस गेला पर आमक पौधक रोपनी गाछी में किसान भाई कऽ सकैत छथि बाड़ी झाड़ी में लगा सकैत छथि। कलमी पौध जे छै से 10×10 मीटर आ बिज्जू पौध जे छै से 12×12 मीटर के दूरी पर लगायल जाए तो उत्तम अछि। सघन बागवानी के नियमित छटाई करी आ प्रत्येक फलदार पेड़ गाछ में से 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 300 ग्राम फास्फोरस 700 ग्राम पोटास आ 80-100 किलोग्राम गोबरक खाद के व्यवहार अवश्य करैत। एकरा संगे केरा के गप करी आम के गप केलहुँ तो स्वस्थ बढ़िया टिश्यू कल्चर वाला पौधक रोपनी किसान भाई करैत लंबा पौध जे छै से 2×2 मीटर आ बौन किस्म के जे छै 1.5×1.5 मीटर के दूरी पर किसान भाई केरा के गाछ लगाबैत। प्रत्येक खद्धा में 5 किलोग्राम गोबरक खाद 500 ग्राम अरंडी के खली 300 ग्राम सिंगल

0: सुपरफास्फेट आ 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास आ 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन मिलाकर रोपनी से पहले बढ़िया से सकर्स के कार्बन डांजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से उपचारित करके तखन एकरा लगावित।
1: त ई छल स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन समसामयिक कृषि संबंधी जे काज ताय प्रसंग में परामर्श आ आब हमरा लोकन एकटा ई फेर गीत सुनै छी।
0: सुनै छी।

0: तो कजरी अपना सब सुनलो विभा सिन्हा के स्वर में, एकरा सुनित सुनित कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटवा के बेर भ गेल अछि। गोर लागै छी उगना भाई।
1: खूब प्रसन्न रहू मोनी बहिन।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे, मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, MPR स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, MLC की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा UDID कार्ड दिखाते भी मतदान किया जा सकता है।
1: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
3: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5: कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
12: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
13: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
14: इतनी भी क्या जल्दी थी?
13: अरे, और छोटी, ये तुम्हारी ना। और ये
14: मेरी गुड़िया की ना।
13: पर दादी, आपके नाम?
15: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
13: शुभ शुभ बोलो। क्या?
16: RBI कहता है।
17: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
18: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी का आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिस अधीक्षक ने कहा, बिना आदेश चलाई गई गोली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के दूध उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार अंतिम दौर में एनडीए, राजद और जनसुराज ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक का प्रावधान करता है।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा है कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन से परीक्षा प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। श्री झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है।
4: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाए। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगा।
0: सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जवान के खिलाफ

0: विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
1: इस संबंध में अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच प्रारंभ की गई है, डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। साथ ही मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि जो जेपी चौक पर AK-47 की फायरिंग से किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं है हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है।
0: वहीं जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने स्पष्ट किया कि सिपाही को गोली चलाने का आदेश किसी ने नहीं दिया था।
2: उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा के बिहार शरीफ में विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य के डेयरी उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है।
3: दुनिया के मार्केट में हम कैसे अपने दूध को, अपने आइसक्रीम को, अपने पेड़ा को कैसे दुनिया के मार्केट में ले जाने का काम कर सके, इसकी चिंता की जा रही है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यक्रम के तहत कम्पेट के परियोजना की लगभग स्वीकृति दी गई है और इसके माध्यम से जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें लगभग 2,500 के आसपास नई समिति बनाने का काम किया गया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री पशु जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इससे किसानों को बीमार पशुओं को लेकर समस्याएं कम होंगी।
3: हम लोगों ने तय किया है दो चीजों को बिहार के गांव-गांव तक फैलाना है। एक तो अभी सभी प्रखंडों में जिस तरह दवाई की दुकान उपलब्ध होती है उसी तरह पशुपालन से जुड़े हुए जो दवाई उपलब्ध कराना है उसके लिए भी दुकान लगभग 1,000 से अधिक केंद्र बनाने का काम पूरे बिहार में किया जाएगा सर।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी शुभारंभ किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में आज रोड शो किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस रोड शो में शामिल हुए। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। राजद का रोड शो मीठापुर से शुरू होकर सब्जी बाग में समाप्त हुआ।
2: इस सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। एक बार जनता खड़ी हो जाएगी तो आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, तो सुनाकी का भी विकास।
1: इधर जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे उत्साह के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आज विधानसभा के विभिन्न संयुक्त समितियों के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में समितियों की प्रभावशीलता बढ़ाने और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बैठक में कई आवश्यक सुझावों पर चर्चा के बाद आगामी कार्य योजना पर सहमति बनी है। राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज

0: सिवान, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।
1: अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बसुआ में सबसे अधिक 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान कैमूर और रोहतास जिले के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न तटबंधों की स्थिति, नदी के कटाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों के साथ ही अंतर जिला समन्वय को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को तटबंधों की निगरानी, सैंड बैग की व्यवस्था और अन्य जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

0: बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न तटबंधों की स्थिति, नदी के कटाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों के साथ ही अंतर जिला समन्वय को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को तटबंधों की निगरानी, सैंड बैग की व्यवस्था और अन्य जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उन्हें रंगदारी की रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया है। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। पटना में 28 जुलाई को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रेड रन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंगेर विश्वविद्यालय के 6 खिलाड़ियों की टीम आज रवाना हुई। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने इन्हें रवाना किया। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरो में पुलिस ने छापेमारी कर मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया है कि जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर 12 करोड़ की लागत से 6 फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति मिल गई है, निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने छपरा शहर में संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान 43 बैग अवैध रूप से भंडारित उर्वरक जब्त किया गया। पश्चिम चंपारण के बगहा में बनने वाले 100 बेड के अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। स्थानीय विधायक राम सिंह ने इसकी नींव रखी। इसके साथ ही पतिलार में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 21 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी के 1819 मोबाइल फोन, प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी का आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड, पुलिस अधीक्षक ने कहा बिना आदेश चलाई गई गोली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा राज्य के दूध उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में एनडीए, राजद और जनसुराज ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
1: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
3: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
4: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
5: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
3: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: बहू,

0: जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
1: जैसे?
0: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
1: तो लेन देन?
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर जिले में सेवा संकल्प समर्पण के 100 दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की उपलब्धियों, जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तथा राज्य के भविष्य के विकास रोड मैप को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधा प्रसारण से मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत जिला पदाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर भूमिहीन परिवारों के बीच वासगीत पर्चा का वितरण भी किया गया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। बीते दिनों जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में समरणालय के मिनी सभागार में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आरम के हाई स्कूल के प्रांगण में जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के निर्माण के लिए अमरपुर और चांदन प्रखंड के क्षेत्रीय कर्मियों तथा दोनों प्रखंडों के चार्ज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। दो बैचों में प्रशिक्षण का कार्य निदेशालय से आए प्रशिक्षकों रविंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार सिन्हा, विवेक प्रकाश और खालिद अहमद अब्बास द्वारा कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 22 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक चलेगा। गरीब चौपाल यात्रा के अंतर्गत राज्य सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री तथा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन बीते दिनों बांका पहुंचे। चंद्रशेखर सिंह नगर भवन टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुमन ने कहा कि पार्टी गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा गरीबों के अधिकार के लिए निरंतर कार्य करेगी। उन्होंने लोगों से शिक्षा के प्रति जागरूक होने की अपील की और अपनी समस्याएं लिखित रूप से देने का आग्रह किया ताकि जिला प्रशासन के सहयोग से उनके समाधान का प्रयास किया जा सके। जिले में 7 निश्चय के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार सहयोग शिविर और जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में समरणालय के मिनी सभागार में आम जनों की समस्याओं की सुनवाई की गई। प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A भागलपुर डिवीजन से संबंधित भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने तथा रैयतों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से बीते दिनों बाराहाट अंचल में भूमि अधिग्रहण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रैयतों से मुआवजा भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निष्पादन किया गया। अधिकारियों ने रैयतों को आवश्यक अभिलेखों एवं प्रक्रिया की जानकारी देते हुए शीघ्र दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। बांका जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समरणालय के मिनी सभागार में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विकास की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक तथा विभिन्न प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

0: उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिहार भवन और अन्य सन्नी मार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में निबंधित 81,388 निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 करने का लक्ष्य प्राप्त किए गए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे बांका जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विदु शेखर।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर को। कुछ क्षणों में संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं और आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। लेकर कार्यक्रम
2: पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर

ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर

का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन

बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरल

से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। यह विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं।
बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं।

0: फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खरगे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

हाँ तऽ अखन अपना सब कुमकुम झा के स्वर में ई कजरी सुने छलो हैं। तो वास्तव में जे हिसाब से जे ऋतु रहैत अछि ओहि हिसाब से जे गीत सुनै छी तऽ वास्तव में बड्ड नीक लगैत अछि। होइत रहैत अछि जे सुनते रही, मुदा काजो तऽ आओर बाँचल अछि। अखन कार्यक्रम में बचल अछि जे किछु परसबाक, ओकर बादे न फेर गीत सुनब। मैथिली साहित्य मे लोकगीतक अजस्त्र प्रवाह प्रवाहित भेल अछि। लोकगीतक अर्थे होइत अछि लोकक गीत, लोक द्वारा रचित, लोकक लेल लिखल गीत। एक कंठ सँ दोसर कंठ मे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होइत रहल अछि। भाषाक सरलता, भावक उदारता सहज रूपे एकरा देखल आ बुझल जा सकैत अछि। मैथिली लोकगीतकेँ एहि तरहसँ बाँटल गेल अछि। संस्कार गीत भेल, देवी देवताक गीत भेल, ऋतु गीत, व्रत उपास आ सामयिक उत्सवक गीत भेल, श्रम संबंधी

0: गीत भेल, शिशु गीत भेल, एहि प्रकारे हमरा लोकनि देखैत छी जे मैथिली लोकगीतक माध्यमे लोक जीवनक परिचय भेट जाइत अछि। मैथिली लोकगीतमे भक्ति परहक गीतमे गोसाउनिक गीत बेस महत्वपूर्ण अछि। एहि लोकगीतमे भगवतीक स्तुति रहैत अछि। एहिमे स्मरणक संगे संग भक्तक कष्टके दूर करबाक प्रार्थना रहैत अछि। तऽ श्रोतागण, आगू आओर गप करब, मुदा कार्यक्रममे सुनि लैत छी मिथिलामे मास गीत, पूर्व प्रसारित विशेष कार्यक्रम। आलेख आ वाचन छनि डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठकके। तऽ सुनी ई मिथिलामे मास गीत।
1: नमस्कार, आई मिथिला में मास गीत।

संगीत तो मिथिला के रोम रोम में रचल बसल आ पचल अछि। से तेना जना मिथिला के धमनी में रक्त संचार होए, जना मिथिला के हृदयक धुकधुकी होए, जना मिथिला के सांसक आरोह अवरोह होए, मिथिलावासीक जन्म होइते सोहर खिलौना सा सांगीतिक स्वागत होइ छनि आ अंतिम यात्राक बादो सांगीतिक विदाई देल जाइत अछि। मृत्यु के बाद श्मशान भूमि में गीतक संग विदा करबाक परंपरा अखनो मिथिला के कतिपय क्षेत्र में जीवित अछि। एहना स्थिति में जन्म सँ मृत्यु धरिकर जीवन गीत विहीन कोना रहि सकैत अछि, से नहिए रहैत अछि। एहिठामक संपूर्ण जीवन मैथिलीक पारंपरिक गीत सँ सरस सुवासित अछि। जतेक संस्कार आ ओहि संस्कार में जतेक विधि विधान, से सब तो गीतक लय भास सँ समन्वित रहिते अछि। जीवनक वैयक्तिक सुख दुख केर अनुभूति सेहो मधुमय स्वर सँ सिक्त होइत रहल अछि। एहने गीत थिक मास गीत, जाहि में आत्मानुभूति मुखर होइत रहल अछि। इहो थिक ऋतु गीते, जाहि में बरख भरि केर बारहो मास अपन छवि छटा आ गुण गरिमा केर संग विद्यमान रहैत अछि। मुदा एकर मूल उद्देश्य ऋतुक प्रभुता देखायब नहि होइत अछि, अपितु ओहि ऋतु केर प्रभाव सँ उत्पन्न ककरो हृदय केर स्पंदन केँ मुखर करब होइत अछि। एहि गीत केँ ओहि मे उपस्थित मासक संख्या केर आधार पर संबोधित कयल जाइत अछि। जँ बारहो मासक उल्लेख रहल आ ओहि मास सभ मे गौनिहारक मनोभाव रहल तो ओकरा बारहमासा किंवा बारहमासा कहल जाइत अछि। तहिना छओ मासक वर्णन रहने छओमासा आ चारि मासक वर्णन रहने चौमासा भेल। एहि मास गीत सभ मे विरहावस्था, प्रियतम सँ वियोगक कारणे उत्पन्न परिस्थिति सँ उपजल छटपटाहटि, व्याकुलता, मिलन कर उत्कंठा, अभिलाषा आ उत्कट स्नेह रहैत अछि। जन्म मास अखाढ़ सुंदर श्याम गेला मोहि तेज यो, कौन विधि हम मास खेपब हेरत अब दुख कौन यो, सौन हे सखी सर्व सुहावन खनक चंपा गाछ यो, छल मनोरथ झुलब हिड़ला चरिपिया केर साथ यो, भादव हे सखी घोर बरखा दोसर राति अन्हार यो, गुजत दादुर शब्द चहु देशी मोहि किछु नहि भाव यो, आसिन हे सखी आश लगायल आशो ने पूरल हमार यो, राधा कृष्ण मुरारी भजुमन पूरत सब अभिलाष यो। एहि विविध चौमासा केर पाँती सब सन भाव छौमासा में सेहो रहैत अछि। एहि मे आखाढ़, सावन, भादो आ आसिन मासक बाद केर दू मास कार्तिक आ अगहन केर मनोदशा युक्त रहैत अछि। ई कखनो कहैत अछि, कार्तिक हे सखी पर्व लगै छै सब सखी गंगा स्नान यो, सब सखी पहिरे पियर पितंबर हमरो दुख देल यो, अगहन हे सखी सारी लिबि गेल सब रंग लगै शीश यो,

अखनो ई कहैत अछि, कातिक हे सखि कंत न्यायल, न्यायल नंदक लालयो, हरिबिन जे किछु न भावै सुफल सेज उदासयो। अगहन हे सखि सारी लुबुधल, लवल सब रंग धानयो, चिड़ै चोचा सुखहि खेपल, हमधनि विरह बताहियो।

चौमासा छमासे जका बारह मास विरहदग्ध नायिका के मनोभाव रहित अच्छी। एहि में बारहो मास आ ओहि मास में विरहिणी के अवस्थाक चित्र भेटैत अच्छी। चैत में बेली फुला गेल आ मोहन अर्थात प्रियतम हमरा तेज कर थी तब बैसाख में घाम सँ भीजल शरीर पर चंदनक लेप लगा शीतलता के अनुभव करता हूँ। जेठ हेठ भेल कहुना बीतल आब बरखा आबि तुलायल। एहना में प्रियतम नहीं छाय थी तो हम माहुर घोरी का पीबी लेब आ यमराज के गरा लगाएब। आखार में तो हमर आँखिये सरोवर भ जायत जाहि में सँ युगल प्रवाहित होयत। परदेसी प्रियतम कर प्रतीक्षा करैत सावनक रिमझिम बून भादो कर अन्हरिया राति में चमकैत बिजुरी ठनकैत ठनका आसिनक अपूर्ण आस कार्तिक केर एकाकीपन अगहन कर सुहावन समय सुई जका शरीर के पूसक छेदैत जाड़ माघक थरथड़ी आ फागुनक रंग रभस सँ वंचित रहबाक मनोव्यथा बरह मासा केर गीत सब में अबैत अच्छी। कोनो मास गीत होए चौमासा हो आकि छमासा बरहमासा प्रायः सब केर परिणति माने अंत सुखानुभूति केर आशा केर संग होइत अच्छी। मास गीत विरहिणी केर दैन्यक वर्णन तो करैत अच्छी मुदा नायिका केर अनुभूति केर घाव पर मरहम सेहो लगबैत अच्छी। विषम परिस्थिति सँ उबरबाक विश्वासो भरैत अच्छी। एहि गीत सब में पतिक घर नहि अयबासँ दुखी प्रियतमा कखनो हुनका अज्ञानी माने अवसर विशेष के नहि चिन्हनिहार कहि छथि तो कखनो एकाकीपन लेल अपन अपराध कर जिज्ञासा करी छथि तथापि पति के दोषी नहि मानै छथि। पतिक नहि आबि सकबा लेल कुबजी सौतिनिया के दोख दै छथि। ई गीत सब प्रायः आखार मास सँ आरंभ होइत अछि आ क्रमानुसार सब मासक वर्णन करैत चलि जाइत अछि। आखार सँ एहि दुआरे जे ई मास श्रृंगार भाव केर उद्दीपक होइत अछि। ओना एहनो गीत सब अछि जे अपन यात्रा मास गीतक यह तीनटा प्रकार उपलब्ध अछि चौमासा छमासा आ बरहमासा मुदा तीनमासा आ पचमासा सेहो भेटैत अछि। डॉक्टर अणिमा सिंह अपन मैथिली लोकगीत नामक पोथी में एक एकटा तीनमासा आ पचमासा सेहो संकलित कयने छथि। कार्तिक पित्त प्रकोप सबके कतय ठहार हैत रे क्रोध छली बलवान सबसँ हैत की परिणाम रे मास अगहन शीत उपजल करब कोन प्रयास रे पूस उपजल क्रोध तन में मानत नहीं किछु कान रे माघ में हम रहब कोन विधि कृष्ण मधुपुर गेल रे फागुन में मन घुमय लागत लोग चलता संग रे। एहि पचमासे जका तीन मासा कहैत अछि चैत में ऋतुराज संग भय दिली सब सुख मान रे बैसाख आस जराय आतप भेल कमल विकास रे जेठ में नभबुंद झहरत पुहनी भेल शांत रे कामना कै होति चंचल मोल लेल सम्मान रे। विषयक दृष्टि सँ मास गीतक केंद्र में विरह भावे रहल अछि मुदा एहनो गीत अछि जाहि में मात्र ऋतु किंवा मास केर गुणधर्म वर्णित

रामायण आ कृष्ण जन्म सँ संबंधित भाव सेहो आयल अछि। एहि प्रकारक गीत में देखब जे प्रायः गीत में कृष्ण छथि अपन प्रियतम केर उपस्थिति के नायिका कृष्ण केर माध्यमे व्यक्त करै छथि। से प्रायः एहि दुआरे जे श्री कृष्ण लीला पुरुष थिका। ओना मास गीत में सीताराम सेहो छथि, मुदा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम छथि, सीता मिथिला पुत्री छथि। तैं एहन गीतक स्वर भिन्न भेटैत अछि। एहन गीत में उपालम्ब नहि अपितु अनुनय विनय कर भाव होइत अछि। अघन सीता के बियाह पूस कोबर तैयार, माघ सीर कब भराय देव रघुवर जी के, फागुन फगुआ खेलायब चैत फूल लोढ़ी लायब, बैसाख बेनिया डोलायब रघुवर जी के, जेठ घाम पड़े भारी अखाढ़ बुंद झरे सारी, सौन झूलबा लगा देव रघुवर जी के, भादव राती अन्हार आसिन करब सिंगार, कार्तिक आबि गेल मिथिला रघुवर जी के। श्रोता बंधु आई एतबे, अगला भेंट धरिक लेल प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार कर संग अमलेंदु शेखर पाठक के देल जाए अनुमति। नमस्कार।

हाँ तऽ अखन श्रोतागण अखन सुनै छलहुँ मिथिलामे मास गीत, पूर्व प्रसारित ई विशेष कार्यक्रम छल, से सुनलहुँ। आलेख वाचन छलनि डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठकके। तऽ वास्तवमे अपन सभक जे मिथिलाके संस्कृति रहल अछि ओ आरम्भेसँ ई एहन रहल अछि जे बिना गीतेके किछु कोनो आयोजन कोनो रमन चमन बुझेबे नहि करत। बच्चाके जन्मसँ लऽ कऽ मृत्यु पर्यन्त हमरा सभके गीतेसँ होइए अन्त एकर। तऽ हमरा सभके एहन ई रचल बसल अइ जे सम्भवे नहि अइ जे गीतके बिना कोनो काज हमरा सभ कोनो अनुष्ठान पूर्ण भऽ सकैत अछि। व्रत आसामिक उत्सवक गीत, विशेष अवसर पर गाओल जायवला गीत सभकेँ सामयिक गीतक श्रेणीमे राखल जाइत अछि। जेना पाबनि तिहारक अवसर पर गाओल जाइत अछि, छठि पाबनिक गीत, सामा चकेबाक गीत, बरसाइत भेल, मधुश्रावणी पाबनि के गीत भेल, नागपंचमी के गीत भेल, विषहारा के गीत भेल, आ अहल भोरे जखन अपना सभ गबै छी प्राति, ताहिसँ आरम्भ होइत अछि भोर, आ बाट चलित गबैत गीतके बटगवनी आ जन्मक अवसर पर सोहर होइत अछि। सभ प्रकारक गीतक मैथिली लोकगीतमे अपार भंडारक समावेश अछि, जे पाबनिक विशेषता आ संस्कृतिके धरोहर रूपमे सभक समक्ष अछि। जेकरा व्यवहारमे आनैत रहब तखने ई धरोहर बचि सकत। मैथिलीक अधिकांश साहित्य गीतमे अछि। मिथिलामे नेनाक जन्मसँ लऽ कऽ मृत्यु पर्यन्त तक कतेको संस्कार होइत अछि जाहिमे कि बिना गीते होइते नहि अछि। जेना छठिहार भेल, मूड़न भेल, उपनयन भेल, विवाह दुरागमन भेल, आ कार्तिक मासमे बहिन लोकनि अपन अपन भायके लेल, मंगल कामनाके लेल, हुनका दीर्घायु हेबाक कामनाके लेल सामा चकेबा बना कऽ गीत गाबि गाबि कऽ खेलेबाक परम्परा रहल अछि। एहन सुन्दर सुन्दर माटिक ओ सामा बना कऽ खेलाइत छथि। तऽ कतेक पाबनि तिहार एहन अछि जे गीतसँ बुझाइत अछि जे ई पाबनि आबि गेल। तऽ आब कार्यक्रमक जे परम्परा रहल अछि शब्द विमर्श करबाक, मुदा एक गुट आग्रह, जे कोनो प्रचलित शब्द जँ बुझल हुए तऽ ओकरा अवश्य सूचित करी। तऽ हमर सभक कार्यक्रमक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाश।

आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004 आ ईमेल के पता akashwanidarbhanga@gmail.com। तब बढ़े छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द गिरह, ओह केहन गिट्ठा पड़ गेल छै जे खुजिते नहि अछि, केहन मोटरी में गिरह दिलिए जे खुजिए नहि रहल अछि। एकटा शब्द अबैत अछि सिसोहल, माने सुररव, पूरा सिसोहि देलखिन। देखियौ गाछ मे कतेक फूल लागल छलए से पूरा सिसोहि देल गेल, एकटा फूल नहि बाँचल जे हमहूँ चढ़ायब। एकटा शब्द अछि सिमिरताय, बड्ड विन्यस्त छनि ई, कोनो काज करै छथि तऽ बड्ड सिमिरताय के संग बड्ड विन्यासपूर्ण बड्ड नीक सँ करै छथि, जे बैसतो छथि तऽ बड्ड नीक सँ बैसै छथि, हिनका कहीं वस्त्र में गंदा नहि लागि जानि तै बड्ड सिमिरताय रहै छनि हिनका, जे कनियो देखार नहि होनि आ सब प्रशंसक रहनि हिनकर। एकटा शब्द अछि सिम सिम, एह की कहू, एते बरखा पड़ल जे कपड़ा जे छै से सिम सिमे रहि गेल, मतलब आधे सुखायल, पूरा नीक सँ जखन नहि सुखाइए तऽ कहै छै जे कपड़ा सिम सिम अछि। एकटा शब्द अबैत अछि सोटल, कहै छै ने हे हिनकर देह बड्ड सोटल छनि, माने ने बेसी मोट छनि आ ने बेसी

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन्स तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में

हाँ तो श्रोतागण, एहि गीतक संग आब हमरा यानी नीतू के अगिला भेंट धरिक लेल दिया आज्ञा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे सिंगरहार, अब समाचार होंगे।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव।

0: शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। यूकेपीएनपी ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम-1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा।

0: पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over knee tissue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include

0: ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की भी हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दौलत मुश्तरका गेम्स में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दो नौजवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई से मुतालिक अपोजिशन पार्टियों के शोर शराबे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में ये बिल पेश किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अराकीन पर जोर दिया कि वो बिल पर बहस होने दें। उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस के लिए 6 घंटे वक्फ किए गए हैं और 91 तरमीमात मौसूल हुई हैं।
1: अध्यक्ष मोदी जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए। इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें।
0: चूंकि शोर शराबा जारी रहा, इसलिए प्रिसाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 एक अहम कानून है जो मुल्क के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल, जफाकशी और उम्मीदों से वाबस्ता है।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी मान्य सदस्यों से आग्रह, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।
0: इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई, तो उमूर दाखिला के वजीर ममलकत ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पे बहस के लिए पेश किया। इस बिल का मकसद कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम के कानून 1971 में मजीद तरमीम करना है। मुजवजा कानून वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन जैसा ही कानूनी तहफ़ फराहम करना चाहता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मानसून इजलास के दूसरे हफ्ते के पहले रोज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई, क्योंकि अपोजिशन के अराकीन नीट मामले पर एहतजाज के दौरान तालिब इल्मों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। लोकसभा की कार्रवाई 4 बार मुलतवी की गई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 5 बार मुलतवी की गई। अपोजिशन के शोर शराबे के माबैन अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए पेश किया गया है। इस कानून का मकसद एक जाम कानूनी लाहे अमल कायम करने के साथ साथ तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ़ फराहम करके इम्तिहान के निज़ाम में शफाफियत, ईमानदारी और इसके वक़ार को मुस्तहकम करना है। इसमें बहुत सी अहम शिकें हैं, जिनमें 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और कसूरवार ठहराए गए मुजरिमों की इमलाक को जब्त करने समेत सख्त गुंजाइशें शामिल हैं। चेयर और हुकूमत की बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन के अराकीन दोनों ऐवानों में शोर शराबा करते रहे। चूंकि शोर शराबा और मुखालफत का सिलसिला जारी रहा, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल यानी मंगल के रोज दोबारा शुरू होगी। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर

0: अपडेट हासिल करने का मशवरा दिया है। इधर आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पानी की सतह कम हुई है। फिलहाल आसाम में 37,000 से ज्यादा अफराद अब भी 109 राहत कैंपों में कयाम पजीर हैं। ओडिशा के पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा की सालाना इख्तितामी रस्म नीलाद्री बीजे आज मनाई जा रही है। ये पवित्र तकरीब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के मंदिर के गर्भगृह में वाक रत्न सिंहासन पर रस्मी वापसी की अलामत है। पुरी में लाखों अकीदतमंद इस अजीमोशान वापसी के शाहिद बनने के लिए जमा हुए हैं, जो रथ यात्रा तकरीबात का अजीमोशान इख्तिताम है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये रस्म बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर लोगों से मिलजुल कर फातिहाना तौर पर अपनी अबदी पनाहगाह में वापस लौट आए हैं। भगवान जगन्नाथ का देवी लक्ष्मी को मुकद्दस रसगुल्ला पेश करना इस तकरीब का सबसे अहम लम्हा होता है। रसगुल्ला पेश करना खुशनूती और सुलह आश्ती की अलामत है। इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर के दरवाजे खोल देती हैं, जो माफ़ी, हम आहंगी की बहाली और मोहब्बत की फतेह की अलामत है। नीलादरी बीजे के साथ रथ यात्रा का ये मुकद्दस सफ़र अपनी मजहबी तकमील को पहुँचता है। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज़।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस रहनुमाओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस अर्जदाश्त पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की जानिब से नेशनल हेराल्ड से मुतालिक कालेधन को जायज बनाने के केस में इन रहनुमाओं के खिलाफ दायर करदा ईडी की फर्द जुर्म पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने जवाब दहिंदा की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद मामले की अगली समाअत के लिए 10 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की है। असातेजा की अहलियत से मुतालिक महाराष्ट्र के इम्तिहान के पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम ने आज भिवंडी की एक अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। इसके साथ ही इस मामले में मुलजिमीन की तादाद 15 हो गई है। इम्तिहान में हुई बेजाब्तगियों की पुलिस जांच कर रही है। भारत की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने आज ग्लासगो में मुनक़दा दौलत मुश्तरका खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतने वाली ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके साथ उनका मजमुई वजन 199 किलोग्राम रहा। नाइजीरिया की ओनोम डीडी ने कॉमनवेल्थ और गेम्स रिकॉर्ड के साथ 206 किलोग्राम का वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। जीत के बाद भारत की तमगों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी के 3 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मुनक़दा दौलत मुश्तरका खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग के जुमरे में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अवामी इम्तिहानात का तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज़ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की जाँच के लिए IGP की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया है और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल एट यायार न्यूज अलर्ट्स पर भी हैशटैग आस्क यायार के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन यायार और दूरदर्शन की डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एन्केफेलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई हैं
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
2: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका। सैंडफ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है और ख़ास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे
2: डेंगू का है, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट ब्लैक, इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
2: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: जो रात के
2: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
0: अर्ली मॉर्निंग
2: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
0: शिफ्ट में आते हैं
2: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको,

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर

0: मानव के खून की या पशु के खून की जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए, कोई ना कोई किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे, और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो, न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ़ पानी में, और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल, बिस्लरी की बॉटल है या कप है, उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग, तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
0: देखिए, डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है, और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में?
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
2: जी, ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
2: में, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी
3: नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है जी। पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
0: देखिए, जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है तो ये बीमारियाँ, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
0: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो रखा रहता है, लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए, तो इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
2: एक मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पेसिस में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा संक्रमण का?
2: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पर डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है किस दिन बुखार के किस

0: कौन सी जांच कराई जाए या जांच अलग अलग होता है तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है या इससे भी ज्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफी कोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे अगर आपको वैसा हो तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
2: अभी एक योगेश जी का एक प्रश्न और था कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना

0: जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
2: अभी
1: है जी।
2: एक योगेश जी का एक प्रश्न और था
1: जी जी
2: कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार चाहे जो भी आपको ठीक लगे वो नागरिक वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत
2: जरूरी है, कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं रगड़ना भी
2: जरूरी है। रगड़ना जरूरी है, उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
3: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी को बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
0: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो एक पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ, अब ये है केंद्रापाड़ा ओडिशा से जी।
4: नमस्ते जी।
1: आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं
4: जी। मेरा सवाल है वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
2: देखिए,
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
0: शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध में
1: हम अभी तक ही चर्चा कर रहे हैं, तो फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
2: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय है फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी, मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उस पे उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई का प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में।
0: अमित जी, आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीजें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें। वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है, और

0: ये और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरी बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां सरकार कुछ करे मच्छरों से
0: जी।
1: बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
2: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो है वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीव कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी
2: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 डेज।
2: तो लगभग लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है। जैसे पहले डीडीटी का होता था, आजकल डीडीटी क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता है चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
3: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर?
1: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
0: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं।
1: जो डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
2: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
1: हमारे अगले श्रोता है राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोठाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
4: जी, तो मैं मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है अगर आप बच्चों को काटता है, क्योंकि छोटे बच्चों को जरा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय में क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
2: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो

0: मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
1: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
0: बिल्कुल।
1: पीयूष जी ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर काफी बात लिखी जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
2: देखिए डेंगू को लेकर के तीन चार मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज्यादा पैनिकी होता है,
1: रोज की संख्या देखी जाती है,
2: तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज्यादा जरूरी रहता है, और इस दौरान हाइड्रेशन को अप्रोप्रिएट होना यह ज्यादा जरूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए, डिक्लोफिनैक या निमोसुलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासिटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है, जैसे कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जाकर के करें, और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज्यादा ना घबराएं, ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
2: बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूंगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर एंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूंगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी
2: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है, सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता, विजय जी।
3: जी कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
3: विशेषज्ञ को नमस्कार।
2: नमस्ते जी।
3: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवर तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
3: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
2: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें, और बस ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जी।
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
2: तब हो,
1: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। धारीवाल।

0: 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा। इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
1: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो DPT का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है।
0: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं,
1: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
0: जी।
1: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
0: जी।
1: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
0: जी।
1: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका।
0: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में?
2: जी, ये इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें। यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
0: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

नमस्कार। हेलो आकाशवाणी के इस अंक के साथ

0: बहुत कम लोगों को पता है कि संगीतकार नौशाद जो थे वो एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे। उनकी एक गजल है, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। नए गीत पैदा हुए हैं उन्हीं से, नए गीत पैदा हुए हैं उन्हीं से, जो पुरसोज नगमे पुराने बहुत हैं। तो हम भी लेके आते हैं पुराने नगमे। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के पुराने फिल्मी नगमे। तो आज कार्यक्रम आरंभ हो गया है आपके लिए, आपका ये कार्यक्रम। नंबर हमारा वही है जिस पे आप कॉल करेंगे, 9430029353, अर्थात 9430029353। इस नंबर पे आप करें कॉल और सुनें अपनी पसंद के पुराने फिल्मी नगमे। हमें आपके कॉल्स का इंतजार है। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, कला की भीख हम क्यों दूसरे देश से मांगेंगे, गैर से हम क्यों मांगेंगे। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। जी हाँ, भारतीय हिंदी फिल्मी गानों के खजाने से कुछ कतरा आकाशवाणी दरभंगा में भी मौजूद है। आपके उम्मीदों पर, आपकी आशाओं पर, आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आप फरमाइश तो करें हमें, हमारी कोशिश होगी कि आपकी पसंद के फिल्मी नगमे आप तक हम जरूर पहुंचाएं। और एक कॉल हम तक आ भी चुका है, जानते हैं कौन साहब हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: परिचय दें श्रीमान जी अपना।
1: हनुमानगढ़ राजस्थान से महाकाल सिंह।
0: महाकाल सिंह जी हनुमानगढ़ राजस्थान से, आपसे पहले भी हमारी बातें हो चुकी हैं।
1: जी सर।
0: जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है सर, यहाँ बरसात हुई है, मौसम में बदलाव हुआ है।
0: अच्छा,
1: गर्मी से राहत मिली है।
0: जी जी, कल तो अपने दरभंगा और आसपास काफी गर्मी थी, लेकिन आज कुछ मौसम बदला है और कल भी कुछ बदलने की संभावना लग रही है, और वर्षा में कुछ दिनों से नहीं हो रही है। लोगों में परेशानी है क्योंकि तेज धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, वर्षा होनी ज़रूरी है क्योंकि धान की खेती के लिए ये ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, आपके यहाँ वर्षा हुई, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इसको लेकर कि मौसम आपके यहाँ बदल गया होगा और किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद हुआ होगा। और महाकांत जी, आपका कारोबार कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है सर।
0: बढ़िया चल रहा है।
1: संतोषम परम सुखम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, संतोष में ही सबसे ज्यादा सुख मिलता है, जिसे जिसे संतोष धन। जी
1: स्वास्थ्य सबसे पहले, और ये मुझे दरभंगा रेडियो स्टेशन से मिला है सर।
0: अच्छा,
1: आकाशवाणी दरभंगा से।
0: जी जी,
1: 3:45 to 6 चालू होता है, उससे पहले एकदम पैदल चलने के लिए जो

0: गंगा रेडियो स्टेशन मिस्टर जैक को बुलाते हैं, नई जिंदगी दिया है सर।
1: अच्छा जी, तो आपसे एक नई बात हम सुन रहे हैं कि आकाशवाणी दरभंगा का जीवन में आपके लिए कितना दखल है। जी फरमाइश बता दें, आज आप कार्यक्रम में आपका पहला कॉल है।
0: नई रोशनी फिल्म का गाना सर रफी साहब का आवाज में है।
1: किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो,
0: जी जी सर,
1: हमको भी जीने के अंदाज सिखा दो यारो,
0: सिखा दो यारो।
1: जी आपके लिए पहुंचा रहे हैं हनुमानगढ़ में राजस्थान में महाकांत जी ये गाना। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। वालेकुम सलाम, बोलिए फरमाइश अपनी।
1: हेलो
0: जी जी,
1: मेरी बात सुनिए, आप जो है समझे ना, आप नास्तिक फिल्म का नाम को सुना दीजिए।
0: नास्तिक फिल्म का कितना बदल गया इंसान। जी जी जी जी, आपकी आवाज से हम पहचान रहे हैं। चलिए आप तक पहुंचा रहे हैं नास्तिक फिल्म का ये गाना।
1: जी जी, मैं ज्यादा समय नहीं देता हूँ।
0: चलिए, आप हमको समय नहीं देना चाहते हैं ज्यादा, तो हम भी आपका समय नहीं लेंगे और आप तक पहुंचा रहे हैं ये गाना। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: रंग बदला यार ने वो प्यार की बातें गईं, रंग बदला यार ने वो प्यार की बातें गईं, वो मुलाकातें गईं, वो चांदनी रातें गईं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, मैं आनंद कुमार चौधरी बोल रहा हूँ।
0: आनंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं? आनंदित हैं?
1: बहुत आनंदित है सर, लग जाता है तो और आनंदित हो जाते हैं।
0: वाह वाह, बहुत खूब, मालिक की कृपा बनी रहे और आपका कॉल शामिल होता रहे जी।
1: लगता नहीं है तो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, मगर लग जाता है तो पूरा आनंदित हो जाते हैं।
0: और फरमाइश क्या है आज आपकी सर?
1: फिल्म का नाम है सर, इज्जत फिल्म का नाम है और लता जी के गाया हुआ है ये दिल तुम ही, कहीं लगता नहीं
0: जी। जी
1: लता और रफी का है
0: जी, युगल स्वर है मोहम्मद रफी और लता जी का जी। तो आप तक हम पहुंचा रहे हैं आनंद जी, मकरमपुर में।
1: और सब ठीक है?
0: हाँ सब ठीक है, मालिक की कृपा है।
1: आपका तो सर
0: सब आप ही लोगों से सीखते हैं सर, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।

0: तिश्नलब यानी सूखे हुए होंठ वाले। तिश्नलब कहते रहे सुनती रही प्यासी रात, तिश्नलब कहते रहे सुनती रही प्यासी रात, सुबह तक चलती रही दर्द तहे जाम की बात। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। जी आप परिचय दें अपना।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम मुकेश कश्यप से बात कर रहा हूं।
0: मुकेश कश्यप जी, आज आपकी आवाज क्यों नहीं साफ आ रही है भाई?
1: मैं तो के पास में हूँ तो अलग आपसे बात कर रहा
0: हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी आवाज भी साफ नहीं मिल पा रही है हमें, फरमाइश बता दें कश्यप जी। मुकेश जी,
1: उनका नाम है राजा और तू कितनी अच्छी है,
0: तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, बड़ा प्यारा गाना लता जी का गाया हुआ आपके लिए पहुंचा रहे हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनिए ये गाना आपके लिए।

0: बादल जो लगते हैं ना जी, तो फरमाइश बता दें आप अपनी आज।
1: फरमाइश किशोर कुमार से हमारे संग संग चले गंगा की लहरें।
0: बिल्कुल आपके संग संग चलेंगी, अभी हमने पहुंचा दिया है आपके लिए सिमरिया भिंडी पंचायत में ये गाना, आपके साथ साथ ये लहरें चलेंगी। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए गाना।

0: नमस्ते भैया
1: जी, परिचय दें अपना।
0: नाम शहाबुद्दीन हो गया भैया, नार मुंतला से बोल रहे हैं।
1: जी जी,
0: और आप सब सुनाइए भैया, आप कैसे हैं?
1: हाँ, मालिक की कृपा है, एकदम करम है ऊपर वाले का, मस्ती में है। और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम श्रोता मस्ती में रहें। बिल्कुल, जिंदगी जो है ना बड़ी कीमती है, इसको हंस के गुजारा जाए, रोके नहीं।
0: जी जी जी भैया, बहुत अच्छी बात। और भैया आप शायरी जो बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्या बात है भैया।
1: अरे आप लोग जब बात बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फूल झड़ते हैं आप लोगों की बातों से, तो हम शायरी थोड़ी कर लेते हैं, आप ही लोगों से सीखा है ना।
0: आप तो शायरी बोलने नहीं आता।
1: अच्छा, चलिए सीखने की कोशिश कीजिए, हर चीज आप सीख जाएंगे। कभी हम भी बहुत कुछ नहीं जानते थे और धीरे धीरे मैंने प्रयास किया और बहुत कुछ सीखा है, तो आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है? आपको बता दें, जब हम कॉलेज में गए हैं तो हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त दो तीन आदमी के बीच में अगर खड़े होके बोलना होता था मुझे तो मैं बिल्कुल घबराहट से बेचैन हो जाता था। आज 2000 या 2,00,000 लोगों के बीच में भी मुझे बुलवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सीखा है, आप भी सीखिए
0: जी,
1: ठीक है ना? तो सीखिए, सब चीज होता है सीखने से। कोई भी बच्चा जो जन्म लेकर आता है वो सीख कर नहीं आता है ना, तो बिल्कुल सीखिए। फरमाइश बता दें
0: थोड़ा बहुत बोल लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: दीपक जलाते चलना, और दोस्त भी मिले तो दीपक जलाते चलना, और दुश्मन भी मिले दोस्त तो दीपक जलाते चलना।
1: बहुत खूब, फरमाइश बता दें आप।
0: आज भैया हमको लैला मजनू का गाना सुना दीजिए, कोई पत्थर पर न मारे मेरे दीवाने को।
1: और बाकी चीज से मारा जा सकता है।
0: गाना है भैया।
1: अच्छा अच्छा, गाना है, तो चलिए ये गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपने कॉल किया शहाबुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये थोड़ा हम मजा, यानी हाथ से जिसको कहते हैं वो कर लेते हैं, बुरा नहीं मानेंगे आप, है ना? तो आपके लिए ये गाना, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर।
0: थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया।

0: खुदारा एक निगाह नाज ही से देख लो हमको, खुदारा एक निगाह नाज ही से देख लो हमको, गिरबा फाड़ने को आज हम तैयार बैठे हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: जी सर, हेलो आकाशवाणी।
0: जी नमस्कार, परिचय दें अपना।
1: मैं सर, नमस्कार,
0: शुभनारायण जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ सर।
0: आप समय अभाव हो जाता है, अंतिम कॉल है आपका, फरमाइश बता दें शुभनारायण जी।
1: आज का फरमाइश फिल्म नर तुलसी तेरा है, लता जी के स्वर में, मैं तुलसी तेरा
0: है, बहुत ही प्यारा गाना है ना।

0: ये बहुत ही प्यारा गाना है,
1: जी
0: बहुत
1: हाँ,
0: ही
1: बहुत सुंदर
0: अच्छी
1: गीत
0: धुन
1: है।
0: पे गाया गया है,
1: जी
0: इसकी धुन भी जो है ना काफ़ी प्यारी है। तो आपके लिए हम पहुंचा देते हैं रामपट्टी घोषनगर में, शुभ नारायण महतो जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। अगले दिन आप कॉल करेंगे तो आपसे ज़्यादा बातें होंगी, हाँ समय अभाव
1: आपका
0: है।
1: आवाज आपका आवाज मुझे ठीक से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नमस्कार।
0: चलिए सुनिए ये गाना।

और इसके साथ ही आज का हेलो आकाशवाणी का ये अंक समापन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज का जो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया गया, इसके प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक थे असद दाऊद और मैं था आपके साथ सज्जाद अहमद खान। अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए चलते चलते, तेरे दर के बाहर भी दुनिया पड़ी है, तेरे दर के बाहर भी दुनिया पड़ी है, कहीं जा रहेंगे ठिकाने बहुत हैं। तेरे दर के बाहर भी दुनिया पड़ी हैं, कहीं जा रहेंगे ठिकाने बहुत हैं। है दिन बदमज़ाकी के नौशाद, लेकिन है दिन बदमज़ाकी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमेरिकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium